मिडवेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी आदरणीय श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन सभी श्रोताओं का भी विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं जो हमारे इस प्रसारण को न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े

0: पाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिडवीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देश गान। आवाज़ है स्वतंत्र कुमार ओझा की, रचना माखनलाल चतुर्वेदी की।

भक्ति संगीत के आराधना कार्यक्रम में आगे करते हैं हनुमान जी की वंदना और सुनते हैं ये भक्ति गीत। आवाज हरिहरन की है,

अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, आवाज हरिहरन की थी, संगीत ललित सेन का था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं राम भजन। आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना। गीत और संगीत अनूप जलोटा का है।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं श्री गणेश जी की आरती, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और साथियों की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री गणेश जी की आरती। इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक है आत्मा, वाचन और संकलन है विजय कुमार का।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संत कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा केवल मन की शक्ति का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमारे वास्तविक अस्तित्व की ओर भी संकेत करता है। मनुष्य सदियों से ये जानने का प्रयास करता आया है कि वास्तव में वो कौन है। क्या वह केवल शरीर है? क्या वह केवल मन और विचारों का समूह है? या फिर उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो शरीर से परे है? भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्म इस प्रश्न का उत्तर आत्मा के रूप में देते हैं। आत्मा वह शाश्वत चेतना है जो जीवन का आधार है। यही कारण है कि आत्मा का विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शरीर बदलता रहता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक अनेक परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो तत्व इन सभी परिवर्तनों का साक्षी बना रहता है वही आत्मा है। मनुष्य का नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति सब समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु आत्मा न बदलती है न समाप्त होती है। इसलिए आत्मा को अविनाशी, अमर और सनातन कहा गया है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि शरीर में निवास करने वाली चेतना ही उसका वास्तविक स्वरूप है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का संदेश था। जब मनुष्य आत्मा की अमरता को समझ लेता है तब उसके भीतर से मृत्यु का भय कम होने लगता है और वो अपने कर्तव्यों का पालन अधिक साहस और निष्ठा के साथ कर पाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये उदाहरण आत्मा और शरीर के संबंध को अत्यंत सरलता से स्पष्ट करता है। भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ उपनिषद आत्मा के स्वरूप का अत्यंत गहन विवेचन करते हैं। उपनिषदों के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म का अंश है और आत्मा तथा परमात्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित उस चेतना को पहचानना है जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। जैनिज्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। आत्मा अपने कर्मों के कारण संसार के बंधनों में फंस जाती है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम और तप के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को प्रत्यक्ष आँखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे हम हवा को नहीं देख पाते लेकिन उसका स्पर्श महसूस करते हैं, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव हर उपकरण में दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती किंतु उसके कारण ही शरीर जीवित रहता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर में चेतना रहती है। आत्मा के शरीर से अलग होते ही वो शरीर निर्जीव हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति शरीर को आत्मा का मंदिर मानती है। हम सभी ने कभी न कभी अपने भीतर से

0: उठने वाली एक आवाज अवश्य महसूस की होगी। जब हम कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं तो भीतर से कोई हमें रोकता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भीतर एक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसी को सामान्य भाषा में अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है। ये आवाज हमें सही और गलत का बोध कराती है। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर इस आवाज को सुनना सीख ले तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बन सकता है। यही आत्मा का सच्चा अर्थ है, यही उसका संदेश है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, वाचन और संकलन विजय कुमार का था, शीर्षक था आत्मा। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर श्रीकांत पारगांवकर का है, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, मुख्य गायन स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खेती की बात। इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है मूंगफली में कीट प्रबंधन।
1: किसान भाइयों, भारतवर्ष में मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। भारत में लगभग 3.6 मिलियन हेक्टेयर में मूंगफली की खेती की जाती है, जिसमें लगभग 8.5% क्षेत्र वर्षा आधारित है एवं 15% क्षेत्र सिंचित है। भारत के तिलहनी क्षेत्र का 45% क्षेत्र मूंगफली फसल के द्वारा आच्छादित होता है एवं देश के तिलहनी फसल उत्पादन का 55% मूंगफली के द्वारा होता है। मूंगफली के दानों में लगभग 50% खाद्य तेल एवं 25% प्रोटीन होता है। मूंगफली की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट में पत्ती खाने वाले कीट देखा जाता है। ये कीट पत्तियों को खाकर पौधे को पत्तीविहीन कर देते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है एवं परिणाम स्वरूप उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आती है। पर्ण सुरंगक कीट, इस कीट का फसल में प्रकोप अगस्त से अक्टूबर माह तक होता है। इस कीट की छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खाकर सुरंग बनाती है। इस कीट के ग्रसित पत्तियां इनके प्रकोप के बाद की अवस्था में बिल्कुल झिल्लीदार हो जाती हैं एवं ग्रसित पौधा बौना रह जाता है एवं सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रपंच फसल के रूप में सोयाबीन या बरबट्टी की फसल लगाना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप प्रचंड रूप से होता है, उस स्थिति में दलहनी फसल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। कीट प्रतिरोधी एवं सहनशील किस्मों को लगाएं। मूंगफली फसल से अथवा उसके चारों ओर से गाजर घास के पौधों को निकाल देना चाहिए। कीट के अंड समूह एवं इल्ली के प्रारंभिक अवस्था में इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें। मूंगफली फसल के खेत में 5 फेरोमोन प्रपंच प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्थापित करना चाहिए। कीट के जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा चिलोनिस 50,000 हेक्टेयर की दर से छोड़ें। यह क्रिया 7 से 10 दिन के अंतराल में 2 बार अपनाएं। प्राकृतिक जैव नियंत्रक कारकों जैसे मकड़ी, पेइंग प्रिंटिन, रोजर फ्लाई, चींटी, ड्रैगन फ्लाई आदि का संरक्षण करना चाहिए। धान पैरों को फलवार के रूप में उपयोग करने से पर्ण सुरंगक के आक्रमण में कमी आती है एवं परिजीविता प्रतिशत में वृद्धि होती है। मूंगफली का कली छेदक, इस कीट की इल्ली तने के शीर्ष भाग में छेद करती है। इसके तीव्र आक्रमण से नई निकलने वाली पत्तियों के मध्य सिरा के पास अनेक आयताकार छिद्र दिखाई पड़ते हैं। इसके प्रकोप से आगे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल 3% एवं विटेक्स नेगमूटो 5% का छिड़काव इस कीट के नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। तंबाकू की इल्ली, अंडे से निकलने के तुरंत बाद इस कीट की इल्लियाँ सामूहिक रूप से पत्तियों के क्लोरोफिल को खुरच कर खाती हैं एवं बाद में पूरे पौधे एवं फसल में फैल जाती हैं। बाद की अवस्था में ये इल्लियाँ मूंगफली की पत्तियों को अति लोलुपता से खाती हैं। ये इल्लियाँ रात के समय सक्रिय रहती हैं एवं दिन के समय पौधे के चारों तरफ मिट्टी में छिपी रहती हैं। कभी कभी ये पत्तियाँ इतनी भारी मात्रा में खाती हैं जिससे पत्तियों का डंठल एवं शाखाएँ ही पौधे में दिखाई देते हैं। हल्की मृदा में इस कीट की इल्लियाँ फली को बेद कर खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल के शीघ्र बुआई करने से इसके आक्रमण से बचा जा सकता है। प्रपंच फसल के रूप में अरंडी अथवा सूर्यमुखी को लगाया जा सकता है। सूर्यमुखी फसल चिड़ियों के बैठने के रूप में भी कार्य करती है। प्रकाश प्रपंच की स्थापना करें। फेरोमेन प्रपंच पतंगा को पकड़ने के लिए स्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ 10-12 डंडे चिड़ियों के बैठने के लिए स्थापित करना चाहिए। चने का फली भेदक, इस कीट की इल्ली पत्ती, फूल एवं कलिका को खाती है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए खेत की गर्मी में गहरी जुताई करें एवं फसल के साथ प्रत्येक 5 या 6 कतार के बाद

0: एक कतार अरहर की लगावें। कीट की विभिन्न अवस्था में इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें एवं प्रभावित पौध भाग को अलग कर नष्ट करना चाहिए। बीजों को बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा विरडी से 4 ग्राम किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। NSKE के 5% का छिड़काव करना चाहिए। जैव नियंत्रक जीवों का संरक्षण करना चाहिए। जड़ एवं फली खाने वाले कीट, यह कीट फसल को प्रत्येक अवस्था से लेकर खुदाई तक नुकसान पहुंचाता है। यह जमीन के अंदर जड़ों को काट देता है जिससे पौधा कमजोर होकर पीले पड़ने लगते हैं और सूख जाते हैं। असिंचित फसल में इस कीट के द्वारा अधिक क्षति होती है। ये कीट पूरे वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत से फसल अवशेष दीमक के घर एवं रानी दीमक को नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मूंगफली के कीट एवं उनका नियंत्रण करके अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था मूंगफली में कीट प्रबंधन। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और रात्रि 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम। 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:15 पर। सुबह 7:30 पर आपको सुनवाएंगे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम। इसे हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। 10 आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने का। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दोपहर 12 आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत कार्यक्रम सबरंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर आप सुनेगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। बातचीत होगी पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। साथ ही आप सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम व्यंजन विधियां और गीत संगीत। दिन में 1:40 पर आप सुनेगा ईमेल की गूंज कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर सुनेगा गीत गंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर आप सुनेगा भजन संध्या कार्यक्रम। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच और एक ही फिल्म से। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 6:20 पर सुनेगा लोकगीतों का कार्यक्रम गोदली। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम रजनी गंधा। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इसमें शाम 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे आजकल, इसके अलावा मंडी भाव मौसम कर जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8 आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। ये तो थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए सरगुजिया लोकगीत। गायक कलाकार हैं सेवक राम राजवाड़े और साथी।

गुंजी जंगल कार्यक्रम में आप सुनिए सरगुजिया लोकगीत के रूप में ये देवी भजन। गायक कलाकार हैं नंदलाल और साथी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए सरगुजा लोकगीत के रूप में ये रामचर्चा कर्मा गीत। गायक कलाकार हैं श्यामलाल उइके और साथी।

अभी आप सुन रही थी रामचर्चा कर्मा गीत, गायक कलाकार थे श्यामलाल उइके और साथी। इस गीत के साथ ही गुंजी जंगल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम दीवाना एल्बम के इस गीत से, आवाज सोनू निगम की है।

संगीत है साजिद वाजिद अली का। गीत की बोल लिखी हैं फैज़ अनवर ने।

इस कदर प्यार है तुमसे कि हर खुशी में तुम हो और हर गम में तुम्हारा साथ महसूस होता है। अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में ये गीत। आप जैसा कोई इस जिंदगी में आया, सुनी राहों में जैसे बहारों का मौसम छाया। आइए सुनते हैं शान की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, बात तो बनती ही है और बात बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सुबह का समय अपने आप में ऊर्जा से भरपूर होता है, अगर दिन की शुरुआत थोड़ी सी एक्सरसाइज, योग या हल्के फुल्के डांस के साथ की जाए तो पूरा दिन ताजगी और उत्साह से भर जाता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और मन खुश रहता है और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आई जाती है। तो चलिए इस मुस्कान को बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये गीत जो आपको नाचने पर मजबूर कर देगा। आवाजें हैं दलेर मेहंदी और साथियों की। आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम का नाम है सुगम संगीत।

0: समय की कमी के कारण ये गीत हम पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, जिसके लिए हमें खेद है। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार सरगुजा के आज के इस अंक में मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। आप सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में लाते हैं आपके लिए नई नई सूचनाएं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना देते हैं। तो वो सूचना है जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट हर प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी आपके हाथ में हो। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। आइए इस जानकारी के बाद आपको सुनाते हैं अनारकली फिल्म का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत सी रामचंद्र का है और गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र किशन ने।

नमस्कार सरगुजा के अंक में आइए अगली सूचना। प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों को विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन आवास योजना विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के जीवन में न केवल सुधार ला रही है बल्कि पक्के मकान के सपनों को भी साकार कर रही है। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना घर स्वयं बना सकें और गरिमामय जीवन जी सकें। तो यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नज़दीकी कार्यालय में संपर्क करें, पंचायत भवन, और अपने घर का सपना पूरा करें। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं 2 बीघा जमीन का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की। संगीत है सलील चौधरी का, गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक आयोजित होगी। इसी प्रकार हाई स्कूल द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक संचालित की जाएगी। उक्त परीक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा के लिए जिले में 22 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में सतत निगरानी, निरीक्षण और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने हेतु अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी तथा नायब तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दल का गठन भी किया गया है, जिनके द्वारा सतत रूप से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी, साथ ही इनका समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे हमराही फिल्म का ये गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की। संगीत शंकर जयकिशन का था। गीत की बोल हसरत जयपुरी ने लिखी थी। कलेक्टर के निर्देशन में जिला अस्पताल में दिव्यांग बच्चों को UDID कार्ड बनाने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर उन्हें शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाना है। जिला चिकित्सालय में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विकास खंडों में आए हुए 57 बच्चों का विशेष चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सीय मूल्यांकन कर नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र विशिष्ट पहचान पत्र कार्ड बनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पात्र बच्चे का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, ताकि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं भूत बंगला फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मन्ना डे और साथियों की। संगीत है RD बर्मन का। गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं।
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं, दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

नमस्कार सरगुजा में अगली सूचना। सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत सरगुजा जिले के ग्राम मेंढरा कला में कृषि विभाग एवं इफको के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 29 जून से 6 जुलाई तक मनाया जा रहा सहकारिता सप्ताह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, नैनो उर्वरकों के उपयोग, सहकारिता के महत्व एवं शासन की विभिन्न कृषि हितैषी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हमारे किसान भाई नई नई तकनीकों को सीखकर अपने कृषि क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और अधिक से अधिक फसल लेने का वो विचार कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इससे उन्हें नई तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो भी प्रश्न हमारे किसान भाई लेकर आते हैं उनका समाधान इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। तो आइए इस सूचना के बाद सुनवाते हैं उजाला फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

0: भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन नई दिल्ली एवं लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु शिक्षकों से प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरगुजा जिले से जो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु अपना नाम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन 15 जून 2026 से 10 जुलाई 2026 तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु समस्त प्रविष्टियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगी। वेबसाइट www.national.achievers.education.gov.in के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। राज्य एवं केंद्र शासन ने से मान्यता प्राप्त विद्यालयों प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक इस हेतु पात्र होंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा मितान शैक्षिक प्रकाशक एवं निरीक्षक पात्र नहीं होंगे। पुरस्कार हेतु नामांकित शिक्षक को अपना प्रस्तुतिकरण देना होगा। आवेदन करने वाले शिक्षकों के किसी प्रकार का विभागीय प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को ही चयनित किया जाएगा। इस सूचना के बाद आज का नमस्कार सरगुजा बस यहीं तक। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया।

0: केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल

0: भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होलांड लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजीमोरी

0: ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेज को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror.

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित कुछ विशेष रोग के बारे में। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल और खेलकूद ये काफ़ी आवश्यक है, लेकिन बदलते दौर में खान पान की अनियमितताएं और कम शारीरिक मेहनत होने के कारण मोटापा और कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है बच्चों को स्वास्थ्य को लेकर। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां बच्चों में होती रहती हैं, लेकिन कभी इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं कि जिसका पता देर से चलता है। और जब वो बात हमारे मूत्र तंत्र की हो, हमारा जो मूत्र तंत्र है उसमें कई अंग शामिल होते हैं और इन अंदरूनी अंगों में हमारा किडनी जो है वो काफ़ी विशेष होता है। किडनी का जो काम होता है शरीर में, मूत्र के छानने जैसी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं और किडनी के सही काम ना करने से कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और श्रोताओं, किडनी की समस्याएं बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में होती हैं। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बच्चों से संबंधित किडनी की कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे और किडनी से संबंधित बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, इनका कारण क्या होता है और इनका उपचार क्या हो सकता है, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनय राठौर, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और MD बाल रोग विशेषज्ञ हैं एम्स रायपुर में। तो डॉक्टर विनय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि जो बच्चों में आजकल मोबाइल की लत है उससे जो आंखों पे बड़ा दुष्प्रभाव होता है, तो इस तरह की अगर हम बात करें, आजकल जो है बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में मेहनत की कमी हो गई है, बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं, खेलना कूदना कम हो गया है, तो कुछ बच्चों में बीमारियाँ होती हैं छोटी मोटी जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ बीमारी होती है जैसे हमने बताया किडनी से संबंधित, कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
1: जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी होती हैं और कई बार हम जब बताते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं कि किडनी की बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं क्या। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किडनी की बीमारियों को बड़ों की बीमारी माना जाता है, शुगर वालों की, जिनको शुगर है, जिनको BP है, इनकी बीमारी माना जाता है, मगर बच्चों में काफ़ी किडनी की बीमारियाँ भी होती हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। लगभग 10% की जो नेफ्रोलॉजी की OPD होती है उनमें बच्चे होते हैं और इन बच्चों में कई तरीके की किडनी की समस्याएं होती हैं। तो जहां तक बड़े हैं उनको मुख्य समस्या शुगर, BP, इनकी वजह से किडनी की बीमारी होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें मुख्य जो किडनी की बीमारियाँ होती हैं वो तकरीबन आधे केसेस में जन्मजात होती हैं। जन्मजात कहने का मतलब, इस बीमारी को कहा मेडिकल भाषा में कहा जाता है काकुट, जिसका मतलब होता है कंजेनेटल अबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड किडनी। तो ये एक समस्या होती है जिसमें हमारे जो मूत्र और किडनी के जो पेट में हमारी जो बनते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार के कुछ दुविधाएं होती हैं जो आगे जाकर के किडनी की बीमारी, बच्चों में किडनी की बीमारी का कारण बनती हैं। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसके अलावा कुछ बीमारी होती है जो किडनी में कॉमन होती है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन, UTI, तो ये भी एक तरीके की बच्चे की किडनी की बीमारी है। और यदि बच्चों में UTI हो रहा है तो ये अमूमन यह बताता है कि बच्चे के किडनी में या फिर उनकी जो मूत्र नलिकाएं का जो तंत्र है उसमें कुछ ना कुछ खराबी है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है या जो कॉमन समस्या होती है वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो हमारी किडनी है वो छन्नी की तरह काम करती है, वो हमारे खून में से जितनी भी गंदगियां हैं उनको निकालती है और अच्छे जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्रोटीन है इनको हमारे शरीर के अंदर रखती है। तो इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी में ये दिक्कत आती है कि किडनी है वो हमारे शरीर के अंदर से प्रोटीन को ही बाहर निकालने शुरू कर देती है और ये एक बहुत कॉमन समस्या है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं और ये बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा जो और कुछ बीमारियां होती हैं जो किडनी बच्चों में देखी जाती है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यानी कि ऐसी बीमारियाँ जिसमें किडनी में इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ गया हो। कुछ बीमारियों को AKI कहा जाता है। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी इंजरी, जैसे किसी को दस्त हुआ या मलेरिया हुआ उस समय किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से किडनी की बीमारी होती है। और एक और कॉमन बीमारी होती है पथरी। तो हम हमेशा सोचते हैं कि पथरी बड़ों की बीमारी है मगर कुछ बच्चों को भी पथरियों की बीमारी होती है और पथरी की बीमारी की वजह से भी किडनी को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो ये लगभग कारण है। कहने का मतलब

0: ये है कि हमें सजग होना चाहिए कि बच्चों में भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, तो इसमें किन किन एज ग्रुप के बच्चों को आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है?
0: जी, तो जैसे मैंने कहा कि किडनी की बीमारियाँ बहुत छोटे बच्चों से लेके, इनफैक्ट जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे लेके 18 साल तक के बच्चों में सभी में मिलती हैं। और जो कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज, जैसे मैंने बताया कि काकुट जो बीमारी बोल रहे हैं, वो अमूमन छोटे बच्चों में होती है, मगर ऐसा नहीं होता है कि कुछ बीमारी ऐसी होती है कि ये हमें बाद में यानी कि 13-14 साल की उम्र में भी पता चलती है। तो सारी उम्र, इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि पेट के अंदर से ही ये बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो आज के डेट में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कुछ किडनी की बीमारियाँ जो होती हैं वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से 20वें सप्ताह में भी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी पता चल जाती है। तो ये सब जो बीमारियाँ हैं जो बच्चों की, वो सारे एज ग्रुप्स में देखी जाती हैं। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी है, टिपिकली 3 से लेकर 8 साल की उम्र के बीच में बच्चों को देखी जाती है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ये है, ये सब बीमारियाँ हैं, ये कुछ बड़े उम्र के बच्चों में भी, जैसे 13-14 साल के बच्चों में भी है, उनमें भी देखी जाती है। तो ये बीमारियाँ सारे एज ग्रुप को ही इन्वॉल्व करती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जो मैं आपने बताया कि जो काफ़ी छोटे होते हैं उनमें भी किडनी डिसीज होती है, तो छोटे बच्चे तो जैसे उनमें कुछ तकलीफ होगी वो बता भी नहीं पाएंगे, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सामान्यतः बड़े जो होते हैं वो अपनी शुगर बीपी के बारे में वो नपा जाके हॉस्पिटल में नपवा लेते हैं या शुगर का चेक करा लेते हैं, उसके बाद उनको पता होता है कि उनको किडनी की बीमारी हो सकती है तो वो टेस्ट कराते रहते हैं, या कुछ और कारण होता है जैसे पेशाब में जलन वगैरह होती है तो वो तुरंत बता देते हैं कि भाई पेशाब में जलन है, अस्पताल में जाके डॉक्टरों को दिखा देते हैं। मगर छोटे बच्चों के साथ ये मुश्किल होती है कि वो अपने लक्षण नहीं बता पाते, और लक्षण बता पाते हैं तो वो कुछ वेग होते हैं कि हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी किडनी के पेशेंटों में कुछ कुछ लक्षण होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनमें से सबसे कॉमन है वो है सूजन आना। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है। आंखों में आप देखेंगे तो सूजन आता है। अब दिक्कत ये होती है, कई बार ये सूजन है सुबह सुबह तो रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे सूजन चले जाती है। तो माँ बाप उनको लगता है कि ये कोई लक्षण बहुत चिंताजनक नहीं है, मगर यदि आंखों के नीचे यदि सूजन आ रहा है तो ये चिंताजनक विषय है और इसमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसी तरीके से दूसरा जो कॉमन लक्षण होता है वो पेशाब में खून का आना, ये दिख जाती हैं तो तुरंत माँ बाप सलाह ले लेते हैं। तीसरा कॉमन लक्षण होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना, अगेन इसमें जो है माता पिता अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मगर कुछ चीज़ें होती जो लक्षण जिनको हम इग्नोर करते हैं, उनमें से सबसे एक है कॉमन है वो है बुखार का आना। तो यदि बुखार आ रहा है किसी बच्चे को, 1 साल से नीचे बच्चे को या 2 साल से नीचे बच्चों को, और उसको कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, उसको वायरल फीवर नहीं लग रही है, सर्दी खांसी नहीं है और बुखार आया हुआ है, तो ये अमूमन लक्षण होता है कि किडनी में या यूरिनरी ट्रैक में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से बच्चों को यूटीआई हुआ है यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। और इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि बार बार बच्चों को बुखार आ रहा हो, बुखार का कारण पता ना चल रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और किडनी के बारे में सोचना चाहिए। एक और कॉमन लक्षण जो हम भूल जाते हैं वो है सरदर्द, और ये बड़े बच्चों में होता है। बड़े बच्चों में सरदर्द होता है तो हम उसको सोचते हैं कि ये सिंपल सरदर्द है और दर्द की दवाइयाँ दे देते हैं और उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करते, और कई बार डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है कि सरदर्द की दवाई देता है। हम ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं कि किडनी से समस्या से भी रिलेटेड हो सकता है। किडनी बीमारी जब होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर से सरदर्द होता है। तो हमें यदि सरदर्द हो रहा है तो एक बार ज़रूर से बच्चे का प्रॉपर तरीके से किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाके बीपी का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सरदर्द भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी की बीमारी होने का, और ये लक्षण हम अमूमन मिस करते हैं। इसी के तरीके से कुछ और तकलीफें होती हैं, जैसे कि किडनी के आसपास में एरिया में दर्द होना। ये दर्द हम पेट दर्द की तरह इग्नोर करते हैं कई बार, सिंपल पेट दर्द है इस तरीके से, मगर यदि ये पथरी का निशानी हो सकता है, तो इसलिए यदि पेट में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए और आगे के टेस्ट कराने चाहिए। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं, हमें कभी भी इग्नोर करना नहीं चाहिए बीपी के बारे में, सरदर्द को, बुखार को, ये 3 चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं। बाकी चीज़ें पेशाब में कमी होना, पेशाब में खून का आना या सूजन आना, ये हमें दिख जाती है और इसके बारे में हम सलाह ले लेते हैं। तो मैं श्रोताओं से इसके बारे में सजग रहने के लिए कहूँगा कि छोटे बच्चों में यदि या बच्चों में सर दर्द हो रहा है या उनको इस तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके प्रति, किडनी बीमारी के प्रति सजग रहें।
1: डॉक्टर साहब, हम बातें और करेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत सुनें।
0: तो मेरी पसंद का एक गीत, हम तेरे प्यार में साला आराम को बैठे,
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर वीना राठौर जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एम्स रायपुर में, किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और बाल रोग में MD भी हैं। डॉक्टर वीना जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे जो बच्चे हैं उनमें किडनी से संबंधित कुछ रोग के बारे में, तो आपने बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स से हम पहचान सकते हैं कि इनमें किडनी के रोग भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं एज में, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं जो प्राइमरी किडनी के डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं?
1: जी, तो अब जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे बच्चों में तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वो बता नहीं पाते, लेकिन बड़े बच्चे में जो दिक्कतें होती हैं वो बता सकते हैं। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम बताते हैं वो पेशाब में जलन का है, पेशाब में रोक नहीं पाने का है, या पेशाब बार बार जाने का है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये किडनी डिजीज़ को बता सकते हैं। थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक और चीज़ जो हम बहुत किडनी की बीमारियों में दिखते हैं वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट की कमी का, और ये माँ बाप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और ये अगेन एक ऐसी चीज़ है जो मिस हो जाती है। यदि आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, यदि आप बच्चे की वेट नहीं बढ़ रही है, तो आप ये सोचते हैं कि ये खाना पीने की वजह से नहीं हो रहा है या किसी अन्य कारण से नहीं हो पा

0: पा रहा है, लेकिन यदि हाइट नहीं बढ़ रही है और ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, ये भी एक मार्कर हो सकता है कि बच्चे को किडनी की बीमारी है। और अगेन इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत होती है। कंप्लेन बताते हैं कि पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में कुछ अलग तरीके से स्मेल आ रही है, ये एक कुछ लक्षण होते हैं जो बड़े बच्चे हमें बता सकते हैं और ये गाइड करते हैं कि बच्चे को कोई किडनी की संभावित बीमारी हो सकती है। इसी बात में मैं एक और चीज़ जो बताना चाहूँगा कि पेशाब का धार, ये पर्टिकुलरली जरूरी होता है पुरुषों के लिए जो मेल बच्चे होते हैं, तो पेशाब का धार में यदि कमी आ रही है वो भी एक मार्कर होता है कि पेशाब में बच्चे के मूत्र में तंत्र में कोई ना कोई दिक्कत है और इसके लिए भी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब अब जब हमने इसके लक्षणों की बात की है तो यदि बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट और जांचें हैं जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा अब किडनी रोग से ग्रसित होने वाला है या हो गया है?
0: जी, तो जिस जब भी हमें बच्चों में इस तरीके के लक्षण दिखें तो हमें पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं, बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं आजकल, इवन जिला अस्पताल और उससे भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होते हैं। वो है सिंपल पेशाब की जांच कि पेशाब में प्रोटीन कितनी जा रही है, पेशाब में माइक्रोस्कोपी करके देखा जा सकता है कि उसमें पस है कि नहीं है। दूसरा खून के कुछ जांच होते हैं जिसमें जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहा जाता है। क्रिएटिनिन एक प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी छान के हमारे शरीर से बाहर निकालती है, तो उसका लेवल यदि बढ़ा होता है वो एक मार्कर होता है कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट अगेन आप जाके, अब बच्चों में ब्लड प्रेशर मेज़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए पीडियाट्रिशियंस के पास हमें जाना होता है वो ताकि वो तरीके से ब्लड प्रेशर ले सके। तो ये तीन मेजर टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एडवांस टेस्ट में जैसे मैं बताऊँ तो एक अल्ट्रासाउंड कराना कि पेशाब के रास्ते में किडनी कितनी है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, ब्लेडर कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार जैसे मैंने बताया कि बच्चों का यदि पेशाब का फ्लो कम है तो यूरोफ्लोमेट्री नाम की एक टेस्ट होती है, MCU, एक्स्ट्रा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कई बार CT स्कैन, ये कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि किस बच्चे को क्या बीमारी है, बट बेसिक टेस्ट जो है वो पेशाब की जाँच, क्रिएटिनिन मेजर करना और एक सोनोग्राफी, ये तीन से अधिकतर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब जैसे इन सब जांचों के बारे में आपने बताया और इन जांचों में यदि प्रारंभिक स्तर पर पता चल जाता है कि किडनी की डिसीज होने वाले हैं या किडनी के जो रोग हैं प्रारंभिक स्तर पर है, तो उसके ठीक होने या उससे रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं?
0: जी, अब ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हम कोई भी जाँच इसलिए करते हैं कि हम उसका पेशेंट को इलाज करके रिकवरी कर सकें और यही मकसद भी होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़रूरी तो ये होता है कि दो तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे एक नेफ्रोटिक एक एक्यूट किडनी इंजरी, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो जहां तक एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल होता है, यानी उसका सही तरीके से इलाज हो जाए तो रिवर्स हो जाती हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कंप्लीट रिवर्सिबल पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सकता है और मैनेज करके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, अगेन एक बीमारी है जिसमें 70-80% पेशेंटों को हम इलाज करते हैं तो कंप्लीट रिकवरी होने की गुंजाइश होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें बीमारी का पता जल्दी से जल्दी पता चले ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करके मैक्सिमम आउटकम को हम ले सकें। यदि बीमारी का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो अमूमन सारी किडनी की अधिकतर बीमारियां रिकवरी एक्सपेक्टेशन होती है।
1: तो डॉक्टर साहब कई बार किडनी रोगों से ग्रसित लोगों या बच्चों के लिए कहा जाता है कि डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये डायलिसिस क्या होता है?
0: जी, जैसे कि मैंने बताया कि कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि बच्चों में भी डायलिसिस होती है क्या, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों में भी डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस क्या होता है? हमारी किडनी मुख्यतः हमारे शरीर से जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे जैसे किडनी फेल होती जाती है तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब इसको आर्टिफिशियली तरीके से इसको शरीर के बाहर से निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट में हम एक कैथेटर लगा देते हैं, उस कैथेटर में हम एक PD फ्लूइड आता है, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, उसको हम पेट के अंदर डालते हैं और सारी शरीर की जो गंदगी होती है वो उस पेरिटोनियल फ्लूइड में इकट्ठा हो जाती है, फिर उस इकट्ठा फ्लूइड को हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं, तो यह प्रक्रिया को पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। छोटे बच्चों में यही एक डायलिसिस का माध्यम होता है, क्योंकि जो मशीनें होती हैं, अगला बात मैं बताने वाला हूँ हीमोडायलिसिस के बारे में, वो इनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो छोटे बच्चों में ये काफ़ी कारगर तरीका होता है, जिससे ये डायलिसिस के माध्यम से हम वेस्ट

0: प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा मैंने बताया हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में एक मशीन होती है जिसमें हम शरीर के से खून को एक डायलाइजर कहा जाता है जिसको जिसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें डाला जाता है, वहाँ से शरीर की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं और फिर जो अच्छी खून है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलने के बाद जो खून है उसको वापस पेशेंट के या बच्चे के शरीर में वापस डाल दिया जाता है, तो इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। हीमोडायलिसिस में एक मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, एक संस्थागत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हॉस्पिटल में ही किया जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ट्रेनिंग दे देते हैं माँ बाप को, तो उसके माध्यम से वो घर बैठे बैठे भी अपने घर में पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, कोई बच्चा क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित है तो अब उसे डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ेगी?
0: जी, अब ये भी जैसे मैंने कहा कि कई बार हमें लोगों को समझाने में मुश्किल होती है कि बच्चों में भी किडनी की बीमारी हो सकती है क्या, उसी तरीके से माँ बाप को या लोगों को समझाने में ये भी मुश्किल होती है कि क्या बच्चों को भी डायलिसिस होता है।
1: जी,
0: तो जी, बच्चों का भी डायलिसिस होता है और बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी बिल्कुल इस लेवल तक काम करना बंद कर दे कि उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो शरीर से बाहर ना निकल पाएँ और शरीर को हार्म कर रही हूँ। अमूमन जो मेज़र किया जाता है वो GFR में से, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, उसके माध्यम से मेज़र किया जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब लेस देन 10-15 और 10 से लेस के आसपास होती है तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। बट ये और भी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि डायलिसिस की ज़रूरत बच्चे को कब पड़ेगी, इंक्लूडिंग उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसमें खून बन रहा है कि नहीं बन रहा है इत्यादि। जैसे मैंने बताया किडनी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता कि वो पेशाब को हमारे शरीर के खून को छाने, खून भी बनाना एक हमारे किडनी का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा किडनी हमारी हाइट, वेट, बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि इन सब चीज़ों में भी कमी आती है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस दो तरीके के होते हैं, छोटे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत इफेक्टिव और कारगर होती है और हीमोडायलिसिस जो बड़े बच्चे हैं उनमें, कई बार छोटे बच्चों में हीमोडायलिसिस नहीं किया जा सकता, अमूमन 10-12 kg जब होता है या 5-6 साल बच्चे उनमें ही हीमोडायलिसिस की संभावना दिखती है। ऐसे बच्चों में पेरिटोनियल डायलिसिस एक अच्छी मोडालिटी है, बड़े बच्चों में हीमोडायलिसिस भी किया जा सकता है।
1: जी जी जी, तो डॉक्टर साहब, अब जब डायलिसिस की नौबत आ गई है और ऐसा भी पता चल रहा है कि कभी कभी इस तरह भी होता है कि डायलिसिस के बाद भी आराम नहीं होता है, तो हम देखते हैं कि बड़ों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है, तो क्या बच्चों में भी ऐसी नौबत आ सकती है?
0: जी बिल्कुल, जो जिन बच्चों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है या जैसे मैंने बताया आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि अब ये बीमारी रिवर्स नहीं हो सकती, तो ऐसी बीमारियों में बच्चों में भी ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है और इनफैक्ट ट्रांसप्लांट बच्चों में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू डायलिसिस। जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है उनमें यदि ट्रांसप्लांट हो जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि एक नई किडनी मिलने से बच्चे की ग्रोथ, हाइट और स्कूल जाना ये सब बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू डायलिसिस में रहने में। लेकिन अब इसमें डोनर्स होते हैं वो अमूमन घर के रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये डोनेट करते हैं किडनी और ब्लड ग्रुप मैच करने के बाद, बाकी और टेस्ट करने के बाद यदि ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो उसके माध्यम से भी जिनके पास डोनर नहीं है, ब्लड ग्रुप मिल नहीं पा रहा है, ऐसे जो मरीज होते हैं वो उसमें अपना नाम लिखा सकते हैं इस प्रोग्राम में। और छत्तीसगढ़ की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल ये लिया गया है कि यदि कोई ब्रेन डेड डोनर जो डोनेट करने वाला है वो बच्चा है तो वो किडनी बच्चों को ही अलोकेट की जाती है या बच्चों को प्राथमिकता मिलती है उसमें अंगदान में के माध्यम से। और अभी हाल ही में ये एक बच्चे को ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इस तरीके से बच्चों की किडनी की ट्रांसप्लांट एक बहुत ही अच्छी पद्धति है जब किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, और इसके माध्यम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो एम्स है यहाँ भी कई तरह की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अभी उपलब्ध हो चुकी हैं, तो हम देखें तो किडनी डिसीजेस के बारे में खासकर बच्चों के संबंध में, तो अभी एम्स में कौन कौन से जो ऐसे चिकित्सक की सुविधाएँ उपलब्ध हैं?
0: जी, तो एम्स रायपुर में काफ़ी हद तक किडनी, बच्चों की किडनी से रिलेटेड बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो सबसे पहले बच्चों को देखता है और वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है। वहाँ पे बच्चों की अधिकतर किडनियों की बीमारी जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या UTI है, इस तरीके की बीमारियों का वहाँ पे इलाज हो जाता है और वहाँ पे डेली ओपीडी चलती है, वहाँ पे संपर्क किया जा सकता है। सीरियस केसेस में पीडियाट्रिक इमरजेंसी है, वो 24/7 खुली रहती है, वहाँ संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट

0: डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी और डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ पे बच्चों की पेशाब के रास्ते हैं उसमें यदि कोई समस्याएं होती हैं तो उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सुविधाएं उपलब्ध हैं. और उसमें चाहे जैसे मैंने बताया कि मेल बच्चों में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व एक नाम की एक बीमारी होती है जिसमें एक वाल्व होता है हमारे पेशाब के रास्ते में, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है. या वेसाइटोको यूरेट्रिक रिफ्लक्स होती है जिसमें पेशाब हमारा बाहर निकलने के बजाय कई बार वापस बैक किडनी की तरफ जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसकी आधुनिक इलाज उसका उपलब्ध है. इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की कि यदि किडनी फेल हो जाए और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े तो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में डायलिसिस दोनों पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस बच्चों के लिए इसकी सुविधाएं उपलब्ध हैं. ट्रांसप्लांट के लिए अगेन हम एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं जिसकी ओपीडी हर गुरुवार को नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है. वहाँ पर हम बच्चों के लिए डेडिकेटेड ओपीडी होती है, तो वहाँ ऐसे पेशेंटों को हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए जो टेस्ट होते हैं, जो तैयारियाँ होती हैं, वो उस ओपीडी में भी की जाती हैं.
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी डिसीजेज ना हो, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हम किडनी के रोगों से कैसे बच सकते हैं?
0: जी, अब रोकथाम बहुत ज़रूरी है किडनी की बीमारियों में. आज जैसे आपने बताया कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है
1: जी,
0: वो इतनी चेंज हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज, बच्चों में एक्टिविटी, खेलना कूदना ये बहुत कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है
1: जी.
0: और इसके साथ साथ हमारा सेवन जो खाना है वो अब घर तक की घर का बना हुआ खाना से हटके बहुत हद तक फास्ट फूड की तरफ जा चुका है
1: जी.
0: और इस फास्ट फूड में अधिकतर बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल और खान पान ये हमारी किडनी को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं
1: जी.
0: और लॉन्ग रन में जो बच्चे हैं, जो तो अभी हैं, उनको अगले 50 साल 60 साल तक की ज़िंदगी उनके सामने है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, धीरे धीरे एक्युमुलेट करती जाती हैं नुकसान. तो इसलिए जैसे आपने पहले भी कहा था कि स्वस्थ लाइफस्टाइल
1: जी,
0: एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. नमक का सेवन कम से कम रहना चाहिए, कोशिश बच्चों के लिए भी ये लागू होता है. इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्टिविटी बना के रखें, कम से कम बच्चे खेलें एटलीस्ट.
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और हमारे श्रोता जो भी कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो डॉक्टर साहब की बताई गई बातों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर होना अच्छा है. जब तक कोई अनहोनी ना हो उससे पहले हमें गंभीर हो जाना चाहिए. बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और ख़ासकर जब बात शरीर के अंदरूनी अंगों की होती है, किडनी जैसे अंगों की होती है, तो हमें ज़रूर सजग रहना चाहिए. डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपने आज हमारे श्रोताओं को बच्चों से संबंधित किडनी रोग के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे बच्चों में किडनी से संबंधित रोग लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर विनय राठौर से भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह। इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्णदास से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुका है। हालांकि जून महीने में मानसून ने पिछले सालों के मुकाबले निर्धारित समय अवधि से थोड़ी देरी से छत्तीसगढ़ में दस्तक दी और दस्तक देने के बावजूद पूरे जून महीने में हम लोग देखें तो औसत से कम बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है। इस वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। हालांकि अब मानसून सक्रिय है और बारिश भी हो रही है। मानसून के आगमन से पहले ही मौसम विभाग ने इस साल यह आशंका जता दी थी कि इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से कम बारिश हो सकती है। इसकी वजह अल नीनो प्रभाव बताया जा रहा है। इन सब स्थितियों के बीच हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या करें? खासतौर से जो धान उगाने वाले किसान हैं वे धान की कौन सी किस्म लगाएं या फिर धान के बजाय अन्य कौन सी फसल लगाना इन

0: स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि मौसम विज्ञान विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास। डॉक्टर दास, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर दास, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पिछले सालों से यदि हम तुलना करें तो इस बार मानसून की स्थिति कैसी लग रही है, क्योंकि किसान थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ में अगर हम वर्षा के आंकड़ों को देखें
0: जी,
1: इस वर्ष मानसून थोड़ा सा देरी से प्रवेश किया है
0: जी।
1: वैसे तो लंबे समय के आंकड़ों का अध्ययन करें
0: जी,
1: तो 2004, 2009, 2023 में भी मानसून जो है 24, 26 और 23 जून को पहुंचा था
0: जी।
1: तो ये इस प्रकार की स्थिति पहले भी निर्मित हुई है
0: जी।
1: मगर अपन खेती किसानी के संदर्भ में देखें
0: जी,
1: तो मानसून निश्चित रूप से 10-15 दिन के डिले से यहाँ पर पहुँचा है
0: जी।
1: और अभी जो है खेती किसानी में धान की बुआई थोड़ा सा जो है पिछड़ा है
0: जी,
1: बाकी उत्पादन पर अभी प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
0: अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है, कुछ तो ये कह रहे हैं कि सुपर अल नीनो प्रभाव है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि बारिश की स्थिति कैसी हो सकती है?
1: अल नीनो के कारण जो है यह देखा गया है
0: जी
1: कि भारतवर्ष में वर्षा की मात्रा में कमी या सूखे पड़ने की संभावना होती है
0: जी।
1: और अगर यह स्थिति जारी रहेगी तो इस प्रकार की आशंका जो है हो सकती है या इसकी स्थिति निर्मित हो सकती है
0: जी।
1: अभी वर्तमान में जो है ऐसा कोई लक्षण दिख नहीं रहा है
0: जी।
1: सामान्य रूप से थोड़ा डिले हुआ है, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है
0: जी।
1: तो अभी हम कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, परंतु सावधानी बरतना ही उचित होगा
0: जी। डॉक्टर दास, ये बताएं कि जैसे यदि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, और इस वर्ष जैसे मानसून ने देरी से दस्तक दी है और थोड़ी सी अनियमितता अभी देखी जा रही है, तो इन स्थितियों को देखते हुए ये जो फसलें हैं, चाहे धान हो या दूसरी फसलें हों, उनकी बुआई की अभी इस समय क्या स्थिति है?
1: छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो है धान की खेती की जाती है
0: जी।
1: लगभग खरीफ में 48-49 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है, जिसमें 38-39 लाख हेक्टेयर में धान रहता है। बाकी क्षेत्रों में मक्का है, मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, मूंगफली है, इत्यादि फसलों की खेती की जाती है
0: जी।
1: और धान की खेती चूंकि बहुतायत क्षेत्र में होती है, अधिकांश क्षेत्र में होती है, तो धान के बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी खेती तीन प्रकार से की जाती है प्रमुख रूप से
0: जी।
1: पहला तो जो है सूखी बुआई
0: जी,
1: जिसमें किसान अपना जो है खुर्रा बोनी कहते हैं वो कर चुके हैं
0: जी।
1: दूसरा है बतर बुआई, जो मानसून का वर्षा होने के पश्चात जब खेत जो है वर्केबल कंडीशन में या काम करने योग्य अवस्था में आता है तब उसकी बुआई की जाती है
0: जी।
1: इसी को गीली बुआई भी कहते हैं
0: जी।
1: और तीसरा है रोपा विधि से धान की खेती करना
0: जी।
1: और रोपा विधि से धान की खेती करने के लिए ही पर्याप्त समय है, बतर बुआई या गीली बोनी करने के लिए अभी अपने किसान भाई को इंतजार करना चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि अभी सभी क्षेत्रों में समान रूप से जो है पानी नहीं गिर पाया है। अगर खेत ठीक से अगर गीला नहीं होगा या जमीन में जो है नमी का प्रवेश अंदर तक नहीं होगा
0: जी,
1: तो बीज के अंकुरण के प्रभावित होने की संभावना है
0: जी।
1: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि धान की जो है बतर बुआई करने के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करें। लगभग 1 से 1.5 फुट का जब जमीन गीला हो जाता है उसके बाद जब खेत बोने लायक स्थिति में आए तब बतर बुआई करना चाहिए, और इसी स्थिति में दलहन तिलहन की ही बुआई करनी चाहिए
0: जी। तो इसमें ये भी बताइए कि जैसे धान में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है ना, धान के उत्पादन में, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं धान की जिनको जो मानसून के अभी जो वर्तमान स्थिति है या आगे जैसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो क्या कोई ऐसी किस्में हैं जिनको उगाने से किसान को मतलब नुकसान की आशंका ज़्यादा ना हो?
1: छत्तीसगढ़ में जो है 3-4 टाइप की भूमि है
0: जी।
1: अपन मुख्य रूप से करें भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार
0: जी।
1: भाटा जमीन थोड़ा सा एकदम जो है ऊपरी हिस्सा रहता है
0: जी,
1: इसमें धान की फसल की खेती नहीं करनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: उसके बाद मटासी, डोरसा और जो है कन्हार भूमि में धान की खेती की जाती है और करने में कोई नुकसान नहीं है
0: जी।
1: इस वर्ष वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वो जल्दी पकने वाली किस्मों का चयन करें।
0: अच्छा।
1: इससे क्या होगा कि यदि किसी भी कारण से अल नीनो की स्थिति में वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो हमारा धान का उत्पादन प्रभावित ना हो, और इसके लिए जो है 110 से 125 दिन के बीच की वैरायटी का चयन करना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा। अब इसमें जैसे ये तो आपने बता दिया कि जो जल्दी पकने वाली फसल है उनको यदि किसान चुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा, इसमें मतलब कौन से समय का ठीक रहेगा? क्या अभी और इंतजार करें किसान या क्या करें?
1: नहीं, अभी तो जैसे मैंने बताया खुर्रा बोनी किसान भाई कर चुके हैं
0: जी,
1: उसमें तो आपको ये गुंजाइश है नहीं
0: जी।
1: अब बतर बोनी के लिए, गीली बुआई करने के लिए अपने पास समय है
0: जी।
1: तो जैसे ही मानसून जो है अपना पूरे रूप में आ जाएगा, या अगर खेत गीला हो जाता है, जहाँ जहाँ कुछ जगह पर अच्छी बारिश हुई है
0: जी,

0: वहाँ किसान भाई जो है गीली बुआई में या बतर बुनी में जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में छिड़काव विधि से बुआई ना करें। अगर कतार में बुआई करेंगे तो मान लो ड्राट की स्थिति पैदा होती है, सूखा की स्थिति पैदा होती है, तो खरपतवारों की मात्रा बढ़ जाती है, तो दो कतार के बीच में मशीन से या निंदाई करने में आसानी होता है
1: जी। इसमें एक बात और है डॉक्टर दास, के जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, इस बात के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो धान के अलावा दूसरी फसल जैसे दलहन तिलहन है वो भी उगाएं। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसको फसल हम विविधीकरण भी कहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप सलाह किसानों को देना चाहेंगे?
0: फसल विविधीकरण के लिए बहुत दिनों से प्रयास जारी है
1: जी।
0: और इस वर्ष राज्य शासन ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है
1: जी,
0: जिसमें अगर किसान भाई धान को छोड़कर
1: जी
0: अगर दलहन तिलहन की खेती करते हैं
1: जी
0: या अन्य फसल लगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा
1: जी।
0: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस वर्ष जो है एल नीनो के कारण जो है पानी कम गिरने की या अनियमित वर्षा होने की संभावना है
1: जी,
0: इस स्थिति में जो भर्री जमीन है या ऊपर की जमीन है जिसमें पानी कम रुकता है उसमें दलहन तिलहन की खेती को अवश्य रूप से करें, राज्य शासन की योजना का लाभ उठाए। इससे फसल विविधीकरण में जो है फायदा होगा या उसकी जो है मात्रा बढ़ेगी जिसका किसान को भी फायदा मिलेगा
1: जी। बिल्कुल, इसमें एक बात और है कि जैसे बारिश में कुछ कमी देखी जा रही है या एक अनियमितता की स्थिति है तो फसलों के उत्पादन पर जैसा आपने भी कहा थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये जो जोखिम होता है किसानों को उससे बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, जैसे एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी यदि कोई योजना हो तो उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं।
0: देखिए, जोखिम से बचाने के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक जो है प्रमुख योजना है
1: जी,
0: जिसमें किसानों को मात्र 2% तक प्रीमियम देना पड़ता है
1: जी
0: और 98% जो है प्रीमियम की राशि है, बीमा की जो प्रीमियम की राशि है
1: जी
0: वो आधा आधा केंद्र और राज्य सरकार जो है वहन करती है
1: जी।
0: तो जो किसान भाई लोन लेते हैं उनका तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हो जाता है
1: जी,
0: जो किसान भाई लोन नहीं लेते हैं वो भी आवश्यक रूप से अपने फसल का बीमा कराएं
1: जी,
0: जिससे अगर सूखा की पड़ता है तो जो फसल का नुकसान होगा तो उसका जो है भरपाई बीमा के माध्यम से हो सकता है
1: जी।
0: इसी तरह से उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित पुनर्गठित फसल बीमा योजना की जो है व्यवस्था की गई है, तो जो फसल सब्जी भाजी खेती करते हैं या फल फूल की खेती करते हैं उनको भी इस योजना का लाभ लेना चाहिए
1: जी,
0: इससे जो है जोखिम को कम करने में मदद मिलेगा।
1: एक बात और है डॉक्टर साहब, आपने बात की धान की, बात की दलहन तिलहन की, बात की ये जो नकदी फसल होती हैं कुछ, है ना, जैसे उद्यान की फसल की भी आपने बात की, कुछ नकदी फसल होती हैं क्योंकि कई बार उनका बड़ा अच्छा दाम भी मिल जाता है बाकी फसलों की तुलना में, इनके बारे में हमारे किसानों को बताएं कि कौन कौन सी फसल छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, आपने बताया कि अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों में जमीन है, तो किस तरह की जमीन में किस तरह की नगदी फसल उगाई जा सकती है और इनका बाजार में इनका मूल्य किस तरह से मिल सकता है, कितना फायदा हो सकता है?
0: नगदी फसल में तो हम लोग प्रमुख रूप से जो है जैसे सब्जी वाली फसलों को अभी कह सकते हैं
1: जी,
0: जिसका बाजार में तत्काल और तुरंत जो है लाभ मिलता है या ज्यादा लाभ मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: अभी आप देखेंगे कि ये राज्य शासन ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन बोर्ड की भी योजनाएं हैं
1: जी,
0: जिसमें पाली हाउस का भी निर्माण किया गया है अनुदान के माध्यम से
1: जी जी।
0: तो पाली हाउस में हम साल भर सब्जी की खेती कर सकते हैं और उन सब्जी वाली फसलों की खेती कर सकते हैं जो सामान्य मौसम में आसानी से जैसे वर्षा काल में नहीं हो पाता है
1: जी,
0: और इन फसलों को लगाएं, इसमें खरीफ की जितने भी सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं
1: जी,
0: और धनिया को लगा सकते हैं, धनिया बहुत हाई रेट में बिकता है, मिर्ची हाई रेट में बिकता है और जिसको जो पसंद है, क्योंकि इसमें हमारा तापक्रम और वर्षा से बचाव हो जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है
1: जी,
0: नमी भी हम रेगुलेट कर सकते हैं
1: जी,
0: तो सब्जी वाली फसलों को पाली हाउस में लगाएं
1: जी,
0: तो बाजार में बढ़िया कीमत मिलता है।
1: अच्छा,
0: हर प्रकार की सब्जी लगा सकते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में गन्ने की खेती होती है
1: जी,
0: तो गन्ने की फसल को भी जो है किसान भाई लगा सकते हैं, राज्य शासन ने कुछ क्षेत्रों में इसको बढ़ावा भी दिया है
1: जी,
0: इसको भी जो है खेती करके जो है लाभ कमा सकते हैं।
1: एक बात और है डॉक्टर दास की, अभी जैसे पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी उससे जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है और राज्य सरकार नैनो DAP और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित
0: कर रही है,
1: तो फसल की पैदावार पे क्या इसका कोई असर तो नहीं पड़ता है और कितना अच्छा है ये?
0: नैनो यूरिया जो है बहुत ही उपयोगी, मतलब जो है सूक्ष्म जो है पोषक तत्व तो है, नाइट्रोजन ही है
1: जी,
0: मगर इसको कम मात्रा में जो है देकर हम जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: या बल्क में जैसे जो चीज उपलब्ध नहीं है
1: जी,
0: यूरिया जैसे अभी नहीं हो पाएगा
1: जी,
0: तो हम नैनो यूरिया का जो है उत्पादन करके इसका उपयोग करेंगे तो इसका जो नाइट्रोजन की कमी से उत्पादन कम होने की संभावना है उससे हम बच सकते हैं
1: जी।
0: तो किसान भाइयों को इसका प्रयोग करना ही चाहिए और ये कम मात्रा में अपन खेत में डालते हैं, क्योंकि इसको इस कम मात्रा में जो है घोल के डाल देंगे।

0: जी
1: तो लाभ तो उतना ही होता है।
0: बिल्कुल
1: और अगर युद्ध के समय जो है उर्वरक की कमी महसूस की जा रही है,
0: जी
1: उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि वो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करें। नैनो
0: अच्छा
1: यूरिया तो है, ये बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है,
0: जी
1: जैविक खादों का उपयोग करें। और हमारे वर्तमान में बहुत सारी जो है देसी विधियां हैं,
0: जी
1: गोबर के माध्यम से जो है हम जो है उसको पानी में घोल कर जो है कुछ दिन रख कर उसमें कई सारे चीजें मिलाकर जीवामृत घनामृत सब बनाते हैं,
0: जी
1: इसका भी उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। ये सब का उपयोग करेंगे तो यूरिया के ऊपर निर्भरता कम होगी
0: जी
1: और उसकी कमी महसूस नहीं होगा
0: जी
1: और उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्पादन हमारा या तो उतना मिलेगा जितना पहले मिल रहा था
0: जी
1: या फिर बढ़ोतरी भी हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: और इसका दूसरा फायदा है
0: जी
1: कि हमारा जो मृदा के स्वास्थ्य है उस पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ता है।
0: जी
1: रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा के स्वास्थ्य को हानि होती है, खराब होता है। इसको अपने को रोकने के लिए ये सब चीजों का प्रयोग करें। इसी तरह से आने वाले समय में
0: जी
1: जब हम जैविक खेती की बात करते हैं
0: जी
1: तो हमको तो, या केमिकल फ्री रासायन मुक्त खेती की बात करते हैं
0: जी
1: तो हमको धीरे धीरे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा।
0: जी
1: तो हमारे पास एक विकल्प है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है।
0: जी
1: अगर किसान पहले से अपना डिमांड रख दे
0: जी
1: तो हम उतने मात्रा में उनको उत्पादन करके उनको दे सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में ही आपसे पूछने ही जा रहा था कि जैसे जो आपने बताया कि जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को क्या क्या उपाय करना चाहिए?
1: किसानों को सबसे पहले तो उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है।
0: अच्छा,
1: अगर उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर अगर बढ़ जाता है
0: जी
1: तो अपने आप में वो बफर एक्शन शुरू हो जाते हैं, उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत रहता है
0: जी।
1: तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है हम जितने भी रसायन खेत में पहले से प्रयोग कर चुके हैं
0: जी
1: और उसका जो रेसिडुअल इफेक्ट है
0: जी
1: उन सब को न्यूट्रलाइज कर देगा वो।
0: बिल्कुल,
1: एक बार जब रसायन फ्री हो जाएगा हमारा खेत
0: जी
1: तो जैविक खेती के लिए वो प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणीकरण में कंडीशन रहता है
0: जी
1: कि विगत 3 वर्षों से वहाँ जो है रसायनों का जो है प्रयोग ना किया गया हो।
0: जी
1: अगर हम गोबर खाद या जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं
0: जी
1: तो निश्चित रूप से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं
0: जी।
1: और आने वाले समय में जैविक खेती की संभावनाएं बढ़ेंगी
0: जी।
1: इसके उत्पाद का जो है हमको मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा, इसका रेट भी ज्यादा मिलेगा
0: जी।
1: और किसान भाई जो है रसायनों का जितना से धीरे धीरे प्रयोग कम करें
0: जी,
1: मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा को बढ़ाएं
0: जी,
1: जल का संरक्षण करें
0: जी,
1: तो हमारा जो है मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दास, आपने बड़े विस्तार से हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको इस जानकारी का लाभ पहुंचेगा। एक बार पुनः हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये सुन रहे थे आप कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास के साथ हमारी बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: कार्यक्रम बातों बातों में अभी आप सुन रहे थे, इसमें मॉनसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह इस विषय पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंट वार्ता अभी आपने सुनी। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की थी।
3: अभी हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारण किया जा रहा था, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि इस रिमझिम सुबह में आप जहां कहीं भी हैं अपने परिवार के साथ एकदम राजी खुशी तंदुरुस्त और मजे में हैं। ये जो बरसती हुई बूंदे है ना, ये ऊपर वाले का वो आशीर्वाद है जो हर मुरझाई हुई कली को भी हंसना और खिलना सिखा देती है। तो फिर हम इंसान गुजरे हुए कल की उदासी को पकड़कर आज की इस इतनी खूबसूरत सुबह मुस्कुराने से भला क्यों कतराते हैं। तो मुस्कुराइए क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है। और पता है, मैं बरसात का मौसम साथ लाया हूं। मेरे को पता था आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने कहा मैं अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, साथ में चलेगी मेरे साथ झमाझम बारिश। और बारिश की सॉन्ग हमारे पास है, तो चलिए भीगते हैं इस गीत में। देखिए, ज्यादा भीगे मत। बारिश जब भी आती है ना, खुशी साथ में लाती है।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की इस प्यारी ठंडी शीतल सुबह में आप सभी साथियों का इस रेडियो दोस्त तरुण का सादर प्रणाम और जय जोहार। मौसम की इस खूबसूरत बहार में बादलों की इस मखमली घटा के बीच आप सभी दोस्तों का अपने सबसे पसंदीदा कार्यक्रम

0: कैसा लगा आपको ये भीगता हुआ गीत? उम्मीद करते हैं कि बारिश के इस मौसम में आप जरूर बारिश में भीगे जरूर होंगे। वैसे हम तो स्टूडियो में इन गीतों के माध्यम से भीगते रहते हैं। चलिए बातों को थोड़ा विराम देते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की इस पावन माटी में एक बहुत ही सुंदर कहावत कही जाती है कि एक कली से माला नहीं बनती, लेकिन जब बहुत सी कलियां धागे में पिरोई जाती हैं तो वो एक खूबसूरत हार बन जाती हैं। सचमुच अकेले चलना आसान हो सकता है, लेकिन दूर तक और ऊंचाइयों तक केवल तभी पहुंचा जा सकता है जब सबके हाथ एक दूसरे के हाथ में हों। सहयोग और संगठन में वो ताकत है जो हर असंभव कार्य को भी पूरी सहजता से संभव बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन इसी महान शक्ति और सामूहिक प्रयास को सलाम करने का दिन है। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। आज सभी को जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि यह विशेष दिवस हर साल जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो वैश्विक विकास और हमारे समाज की उन्नति में सहकारी समितियों के अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। सहकारिता का सीधा और सच्चा अर्थ है एक सबके लिए और सब एक के लिए। चाहे हमारी दुग्ध समितियां हो, महिला स्व सहायता समूह हो, या हमारे किसान भाई बहनों की सहकारी समितियां हो, जब जब लोग अपनी छोटी सी पूंजी और बड़े हौसलों के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़े हैं, तब तब आत्मनिर्भरता का एक नया इतिहास लिखा गया है। हमारे अंबिकापुर और पूरे देश के विकास में इन सहकारी भाई बहनों का योगदान सचमुच वंदनीय है। तो आइए दोस्तों, आज इस विशेष और पावन दिन पर हम सब भी अपने जीवन में सहयोग और सहकारिता की इस भावना को और मजबूत करने का संकल्प लें, एक दूसरे का हाथ थामें, सबका साथ दें और अपने समाज को

तो हम सबको साथ में मिलकर चलना है, तभी हमारे देश में विकास की एक नई राह बनेगी और हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र बनेगा।

साथियों, कहा जाता है कि जब धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि प्रकृति भी एक नई जिंदगी का स्वागत करती है। हरियाली का यही संदेश हमें याद दिलाता है कि पेड़ केवल हमारे आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी सबसे अनमोल धरोहर है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आपको बता दें कि हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ये एक सप्ताह तक चलने वाला वृक्षारोपण अभियान है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। मानसून का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस समय लगाए गए पौधों के अच्छी तरह विकसित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आइए साथियों, इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम भी एक छोटा सा संकल्प लें, कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और इसे पेड़ बनने तक अपना प्यार और संरक्षण दें, क्योंकि पेड़ लगाना केवल प्रकृति से प्रेम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन का सबसे सुंदर उपहार देना है। तो साथियों, आप इस बार कितने पेड़ लगाने वाले हैं? सर

एक, दो या तीन या चार, बताइएगा जरूर। यदि आप 10 पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो एक पेड़ जरूर लगाइए और इस धरती को हरा भरा बनाइए।

दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें रुक कर यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक इंसान का जीवन कितना महान और कितना विराट हो सकता है। सच कहा है किसी ने कि सूरज भले ही अस्ताचल की ओर चला जाए, पर उसकी छोड़ी हुई लाली पूरी दुनिया को रोशन रखती है। ठीक वैसे ही महापुरुषों का भौतिक शरीर भले ही हमसे विदा ले लेता है, पर उनके विचारों का प्रकाश सदियों तक मानवता का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। दोस्तों, कुछ महान व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन भले ही समय की सीमाओं में बंधा हो, लेकिन उनके विचार सदियों तक लोगों को नई दिशा और नई ऊर्जा देते रहते हैं। उनका संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत बन जाता है। ऐसे ही एक महान युग पुरुष थे स्वामी विवेकानंद, महान दार्शनिक, आध्यात्मिक चिंतक। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को आज पूरे देश में अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों, ओजस्वी वाणी और विलक्षण व्यक्तित्व से न केवल भारत भूमि का बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और हमारे आध्यात्मिक दर्शन का गौरव बढ़ाया। उनका वो अमर संदेश आज भी हमारे कानों में गूंजता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी जी के ये शब्द आज भी करोड़ों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने की, हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की एक असीम प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस पावन स्मृति दिवस पर हम सब मिलकर युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके

साथियों, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि इस पावन धरती पर नंगे पांव कुछ दूर तक चला जाए। न किसी दिखावे की जरूरत हो, न किसी ब्रांड की पहचान, बस बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, घास की ठंडी नमी हो और मन में गहरा सुकून हो। जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे धरती को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो। हवा भी कुछ कहने लगती है, पेड़ मुस्कुराने लगते हैं और मन अनायासी खुश हो उठता है। सच मानिए, ऐसे पलों में हम प्रकृति के जितने करीब होते हैं उतने ही अपने आप के भी करीब आ जाते हैं। न कोई शोर, न कोई भागदौड़, बस बारिश की रिमझिम मिट्टी की महक और दिल का सुकून। और जो एहसास उस पल मिलता है ना, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं, शायद असंभव है। कुछ खुशियां दिखाई नहीं देती, कुछ सुकून सुनाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तो आप भी इस सुकून को महसूस कीजिए, प्रकृति के बीच जाइए और हरियाली में कहीं खो जाइए। और यदि हरियाली को बढ़ाना हो तो अपने हाथों से वहां एक पेड़ जरूर लगा के आइए। प्रकृति भी खुश, हम भी खुश और ये सारा विश्व भी प्रकृति से छा जाए।

तो साथियों, अपनी खुशियों को यूं ही बढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी की हर छोटे बड़े आनंद को पूरे मन से महसूस करते रहिए। आज का गुंजन कार्यक्रम बस इतना ही। आशा की आज का गुंजन कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत शामिल किए वो इस प्रकार हैं। मोहरा, हेलो ब्रदर, कहीं प्यार ना हो जाए, साजन बिना सुहागन और बोल राधा बोल, इन फिल्मों में गायक कलाकार इस प्रकार थे उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, यशुदास और पूर्णिमा। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण।

0: मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार रायपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की सुचारू और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को

0: 46,000 टन से अधिक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्पवर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। राज्य सरकार ने किसानों से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए धान की रोपा पद्धति के बजाय डीएसआर यानी सीधी बुआई तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार इस तकनीक से पानी और लागत दोनों में बचत होती है तथा फसल जल्दी तैयार होती है। किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती, बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की भी सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू होगा। शिविर में विकसित छत्तीसगढ़ के विजन, सुशासन और भविष्य की विकास रणनीति पर मंथन किया जाएगा। नीति, नवाचार, नेतृत्व और परिणाम आधारित शासन व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। शिविर में कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सुशासन और जनसेवा सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इस सम्मेलन का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालु अमरनाथ जी गुफा मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से IIM रायपुर में शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवीप और FM बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आइए श्रोताओं, आपको मौसम संबंधी सूचना दे दें। स्थानीय मौसम कार्यालय की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान रहा 25.4 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

आइए अब आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज की दूसरी और तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। रात्रि 10 सुनेगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे। दिन में 12 आप सुनेंगे

मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सब रंग। इसमें आप रंगों से सजी हुई कुछ गीत सुनेंगे। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे कव्वालियां। गायक कलाकार होंगे जफर हुसैन खां बदायूनी और साथी। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन, बातचीत होगी पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। साथ ही आप सुनेंगे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम, व्यंजन विधियां, गीत संगीत। दिन में 1:40 पर आप सुनेंगे श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम ईमेल की गूंज। दोपहर 2:30 पर आप आनंद लेंगे गीत गंधा कार्यक्रम का। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भजन। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच और एक ही फिल्म से क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम गोदली। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के माधुरी कार्यक्रम का। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इसमें शाम 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। इसमें आप सुनेंगे आजकल, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी और आज कर सवाल। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। और रात्रि 9:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के चित्रपट संगीत कार्यक्रम का। ये तो थी श्रोताओं हमारे केंद्र से आज की दूसरी और तीसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

सुबह की 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए नए तराने कार्यक्रम। वंदन अभिनंदन जय जोहार साथियों, उम्मीद है कि आपके चेहरे पर मुस्कान है और दिन में ढेर सारी उमंगें हैं, क्योंकि मन जब खुश होता है तो हर गीत और भी सुरीला लगने लगता है। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण, पूरे उत्साह अपनत्व और ढेर सारी खुशियों के साथ आपका स्वागत करता हूं नए तराने कार्यक्रम में। दोस्तों, नई सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है और नया गीत जिंदगी में एक नई ताजगी घोल देता है। तो आइए आज की इस खूबसूरत यात्रा में कुछ पल गीतों के नाम करते हैं, कुछ पल मुस्कुराहटों के नाम करते हैं और कुछ पल आपकी प्यारी यादों के नाम करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत धुरंधर फिल्म से, आवाजें हैं खान साहब और शाश्वत सचदेव की।

0: Insta. फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

साथियों, जिंदगी कोई मंजिल नहीं बल्कि खूबसूरत लम्हों का एक सफर है, इसलिए हर पल को खुलकर जीना सीखिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और हर दिन को मुस्कुराइए, अपनाइए। कौन जानता है कौन सा गीत आपकी याद को ताजा कर दे, कौन सी धुन आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, कौन से बोल आपके दिल को छू जाए। संगीत यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो संगीत को महसूस कीजिए और सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर, आवाजें हैं अली जफर और श्रेया घोषाल की, संगीत साजिद वाजिद का, गीत के बोल नीलेश मिश्रा के।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज

0: 7 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

साथियों, कभी कभी खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, बस इतना ही काफी होता है कि दिन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आज अपने लिए कुछ पल जरूर निकालिए, मन को थोड़ा सुकून दीजिए, दिल को खुलकर मुस्कुराने दीजिए और गीतों को अपनी यादों का हिस्सा बनाइए। और हम तो आपके लिए ऐसे ही गीत समय समय पर लेकर आते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत थैंक गॉड फिल्म से, आवाजें हैं योहानी, जुबिन नोटियाल और सूर्या रघुनाथन की, गीत रश्मि विराग ने लिखा है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।

0: साथियों, कहा जाता है कि अच्छी गीत कभी पुराने नहीं होते और अच्छी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती। बस समय बीतता है लेकिन उनकी मिठास हमेशा दिल में बसी रहती है। जब कोई मनपसंद धुन कानों में पड़ती है तो न जाने कितनी यादें, कितने चेहरे और कितनी खूबसूरत पल एक साथ आंखों के सामने आने लगते हैं। संगीत की यही बात है। तो सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है चॉकलेट, आवाज सोनू निगम की है।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharangan@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सत्यमेव जयते फिल्म से, आवाजें हैं आतिफ असलम और तुलसी कुमार की।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

नए तरह कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बॉम्बे टू बैंकॉक फिल्म का ये गीत जुबीन गर्ग की आवाज में। गीत मीर अली हुसैन का है, संगीत है रॉनी शिरीष का।

साथियों, आज जब सुरीला सफर आगे बढ़ रहा है तो मेरे मन में एक विचार आया। आज के इस दौर में हम सब दिन रात एक ही भाग दौड़ में लगे हैं और वो है पैसा कमाना, अपने कल को सुरक्षित करना। पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी बात पर मुझे एक बात याद आ रही है, पैसा जेब में हो तो जीने की अंदाज बदल देता है, मगर पैसा जब दिल में उतर जाए तो इंसान के जीने का मकसद ही बदल देता है। जी हाँ, आज का हमारा संदेश बस यही है, पैसा हमें जीवन की हर सुख सुविधा दे सकता है, मगर मन का सुकून, अपनों का साथ और वो निश्चल मुस्कान, यह वो दौलत है जो सिर्फ एक साफ और अमीर दिल से ही कमाई जा सकती है। असली अमीर तो वो नहीं जिसके पास तिजोरियां भरी हैं, बल्कि असल में अमीर तो वो है जिसके चेहरे पर दूसरों को देखकर एक सच्ची मुस्कान आ जाए, जिसके हाथों में किसी के लिए मदद हो। और जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पैसों की बात करते हैं इस गीत में। फिल्म का नाम है सुपर 30, आवाज है विशाल दादलानी की।

वक्त की सुइयां बड़ी धीरे धीरे यहीं खत्म हो रही हैं। ये कभी किसी के लिए नहीं ठहरती। सुरों और यादों का जो एक खूबसूरत गुलदस्ता हम और आप मिलकर सजा रहे थे, अब उसे समेटने की घड़ी आ पहुंची है। यानी अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समेटने का। चलते चलते बस यही कहेंगे, जिंदगी के सफर में मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, मगर जो हर हाल में मुस्कुराना सीख गया असल में वही सिकंदर है। फिल्म का नाम 30 मार खां,

अभी आप सुन रहे थे 30 मार कहाँ फिल्म का ये गीत। आवाजें थी सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की। इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आपके पत्रों से सजा कार्यक्रम सुबह 11:05 पर सुनेंगे आपकी पसंद, जिसे आज लेकर आ रही हैं आपके लिए प्रियंका जी। और कौन से गीत होंगे उस आपकी पसंद के, ये तो कार्यक्रम सुनने के बाद ही पता चलेगा सुबह 11:05 पर।

0: कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 800

0: $63 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द-ए-खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबोवर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी पसंद में। कार्यक्रम के आज के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी प्रियंका। श्रोताओं, आपके पत्र हमारे लिए केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि उनमें बसता है आपका स्नेह, आपका विश्वास और उन गीतों से जुड़ी अनमोल यादों का संसार। इन्हीं भावनाओं को सुरों की मिठास में पिरोकर हम लेकर आए हैं आपकी पसंद के कुछ चुनिंदा मधुर फिल्मी संगीत आप सबकी फरमाइश पर। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें पत्र मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और

इस बत्ता का। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, गांधी बाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका सुशीला और परिवार के सभी सदस्य। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी और परिवार के सभी सदस्य। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर जिला सूरजपुर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु यादव, मनोज प्रज्ञा अनुष्का यादव, कुलेश्वर राजवाड़े और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दीवाना से। गीतकार है समीर और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा और आर्यन वर्मा ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालतिरी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शारदा फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार है आनंद बक्सी। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव का। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: शुक्रिया।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म शर्मीली से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार हैं नीरज और संगीत निर्देशन है SD बर्मन का। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है गांव फ्रांसी से। राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हासी शहर से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, धमतरी।

छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और परिवार के सभी सदस्य। मायापुर अंबिकापुर से रूपेश कुमार सिन्हा और संस्कार सिन्हा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, सोएब खान, पोतरा मुज्ताबा खान और परिवार के सभी सदस्य। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंदसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक आराध्या। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी पसंद में। बढ़ते हैं अब आगे और पढ़ते हैं कि अगली फरमाइश हमें किसने लिख भेजी है। ये पत्र मिला है हमें फुलसरा वाया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास शीला दीवान, ओम प्रकाश रुकमणी, जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य और कुमारी सानवी का। ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से जी उधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, कलेश्वर सिंह पैकरा और सोमार साय। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़ी, दीपक चांदनी, दीपा और कृति। शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। महाराष्ट्र हिंगोली से सहाजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे और हनुमान बोर्डखे। अगला पत्र मिला है हमें ग्राम पंचायत घोंसरा मोहल्ला बेलपारा पोस्ट सिरमिना जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से शिव कुमार, राम कुमार, मनोज कुमार, शिव प्रसाद, अनीता, मानमती, सुलोचनी और परिवार के सभी सदस्य का। आप सभी सुनना चाहते हैं तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गीत शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल के स्वर में। शब्द रचना है SH बिहारी की और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत है फिल्म शस्त्र से। गायक कलाकार है उदित नारायण, शब्द रचना है श्याम राज की और धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैनी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। छत्तीसगढ़ भूरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, गजेंद्र सेन, चिराग सेन, चंद्रप्रकाश सेन और नेहा सेन। सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवानसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम आपकी पसंद का अगला गीत है। फिल्म साजन से गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल और संगीतकार हैं नदीम श्रवण, गीतकार हैं समीर। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिस हुसैन, ईशान हुसैन और परिवार के सभी सदस्य। पीपर पारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। इसके लिए हमें पत्र लिख भेजा है जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान। बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारी। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम राम हरिशंकर और प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन और धीरज। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म खुद्दार का गीत।

श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। आपके स्नेह, आपके विश्वास और आपके पत्रों का ये साथ यूं ही बना रहे। अपने पसंद के गीत और स्नेह भरे पत्र हमें भेजते रहिए, क्योंकि आपकी पसंद ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। और अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद मीडियम वीब और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश भर के सभी जल भंडारों की निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को किसानों के लिए खाद, बीज और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश को 46,000 टन से अधिक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार पर विशेष जोर देते हुए सभी जिलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य योजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। बैठक में बताया गया कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। पात्र संगठन, संस्थाएं और आवेदक अधिक जानकारी के लिए पोर्टल या जल संसाधन, नदी विकास और

0: गंगा पुनर्जीवन विभाग की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले चार दिनों तक पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत आज से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आज समापन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा की हर चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रही थी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। पेश है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग।

स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सबरंग में। कार्यक्रम का पहला नगमा है गुलाम अली की आवाज में, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, शब्द रचना है आनंद बख्शी की। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

संदेश से पहले आपने सुना आवारगी फिल्म का नगमा गुलाम अली की आवाज़ में। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और नुसरत फतेह अली खान।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:05।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में पेश है पंकज उधास की आवाज में जमील मुजाहिद की लिखी ये गजल।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और आमिर खान की आवाज़ों में सरफरोज फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत निर्देशन है जतिन ललित का।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम सबरंग की अंतिम प्रस्तुति में सुनिए नुसरत फतेह अली खां की आवाज में ये नगमा। शायर है जावेद अख्तर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कव्वालियाँ। कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवाने जा रहे हैं जफर हुसैन खां बदाउनी और साथी की आवाज़ों में कव्वालियाँ। तो आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम में जफर हुसैन खां बदाउनी और साथी की आवाज़ों में ये कव्वाली।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कव्वालियां। कार्यक्रम के अंत में पेश है जफर हुसैन खां बदाउनी और साथी की आवाज़ों में ये कव्वाली।

0: अभी आप सुन रहे थे जफर हुसैन खां बदाउनी और साथी की आवाज़ों में कव्वालियाँ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण

0: पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय है मूंगफली में कीट नियंत्रण।
2: भारतवर्ष में मूंगफली एक प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। भारत में लगभग 3.6 मिलियन हेक्टेयर में मूंगफली की खेती की जाती है, जिसमें लगभग 8.5% क्षेत्र वर्षा आधारित है एवं 15% क्षेत्र सिंचित है। भारत के तिलहनी क्षेत्र का 45% क्षेत्र मूंगफली फसल के द्वारा आच्छादित होता है एवं देश के तिलहनी फसल उत्पादन का 55% मूंगफली के द्वारा होता है। मूंगफली के दानों में लगभग 50% खाद्य तेल एवं 25% प्रोटीन होता है। मूंगफली की फसल को हानि पहुँचाने वाले कीट में पत्ती खाने वाले कीट देखा जाता है। ये कीट पत्तियों को खाकर पौधे को पत्तीविहीन कर देते हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है एवं परिणाम स्वरूप उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आती है। पर्ण सुरंगक कीट, इस कीट का फसल में प्रकोप अगस्त से अक्टूबर माह तक होता है। इस कीट की छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खाकर सुरंग बनाती है। इस कीट के ग्रसित पत्तियाँ इनके प्रकोप के बाद की अवस्था में बिल्कुल झिल्लीदार हो जाती हैं एवं ग्रसित पौधा बौना रह जाता है एवं सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रपंच फसल के रूप में सोयाबीन या बरबट्टी की फसल लगाना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप प्रचंड रूप से होता है, उस स्थिति में दलहनी फसल का फसल चक्र अपनाना चाहिए। कीट प्रतिरोधी एवं सहनशील किस्मों को लगाएं। मूंगफली फसल से अथवा उसके चारों ओर से गाजर घास के पौधों को निकाल देना चाहिए। कीट के अंड समूह एवं इल्ली के प्रारंभिक अवस्था में इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें। मूंगफली फसल के खेत में 5 फेरोमोन प्रपंच प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्थापित करना चाहिए। कीट के जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा चिलोनिस 50,000 हेक्टेयर की दर से छोड़ें। यह क्रिया 7 से 10 दिन के अंतराल में 2 बार अपनाएं। प्राकृतिक जैव नियंत्रक कारकों जैसे मकड़ी, पेइंग प्रिंटिन, रोजर फ्लाई, चींटी, ड्रैगन फ्लाई आदि का संरक्षण करना चाहिए। धान पैरों को फलवार के रूप में उपयोग करने से पर्ण सुरंगक के आक्रमण में कमी आती है एवं परिजीविता प्रतिशत में वृद्धि होती है। मूंगफली का कली छेदक, इस कीट की इल्ली तने के शीर्ष भाग में छेद करती है। इसके तीव्र आक्रमण से नई निकलने वाली पत्तियों के मध्य सिरा के पास अनेक आयताकार छिद्र दिखाई पड़ते हैं। इसके प्रकोप से आगे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल 3% एवं विटेक्स निगमूटो 5% का छिड़काव इस कीट के नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। तंबाकू की इल्ली, अंडे से निकलने के तुरंत बाद इस कीट की इल्लियां सामूहिक रूप से पत्तियों के क्लोरोफिल को खुरच कर खाती हैं एवं बाद में पूरे पौधे एवं फसल में फैल जाती हैं। बाद की अवस्था में ये इल्लियाँ मूँगफली की पत्तियों को अति लोलुपता से खाती हैं। ये इल्लियाँ रात के समय सक्रिय रहती हैं एवं दिन के समय पौधे के चारों तरफ मिट्टी में छिपी रहती हैं। कभी कभी ये पत्तियाँ इतनी

0: भारी मात्रा में खाती हैं, जिससे पत्तियों का डंठल एवं शाखाएं ही पौधे में दिखाई देते हैं। हल्की मृदा में इस कीट की इल्लियाँ फली को बेद कर खाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। फसल के शीघ्र बुआई करने से इसके आक्रमण से बचा जा सकता है। प्रपंज फसल के रूप में अरंडी अथवा सूर्यमुखी को लगाया जा सकता है। सूर्यमुखी फसल चिड़ियों के बैठने के रूप में भी कार्य करती है। प्रकाश प्रपंज की स्थापना करें। फेरोमेन प्रपंज पतंगा को पकड़ने के लिए स्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ 10-12 डंडे चिड़ियों के बैठने के लिए स्थापित करना चाहिए। चने का फली भेदक। इस कीट की इल्ली पत्ती, फूल एवं कलिका को खाती है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए खेत की गर्मी में गहरी जुताई करें एवं फसल के साथ प्रत्येक 5 या 6 कतार के बाद एक कतार अरहर की लगावें। कीट की विभिन्न अवस्था में इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें एवं प्रभावित पौध भाग को अलग कर नष्ट करना चाहिए। बीजों को बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा विरडी से 4 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। NSKE के 5% का छिड़काव करना चाहिए। जैव नियंत्रक जीवों का संरक्षण करना चाहिए। जड़ एवं फली खाने वाले कीट। यह कीट फसल को प्रत्येक अवस्था से लेकर खुदाई तक नुकसान पहुंचाता है। यह जमीन के अंदर जड़ों को काट देता है, जिससे पौधा कमजोर होकर पीले पड़ने लगते हैं और सूख जाते हैं। असिंचित फसल में इस कीट के द्वारा अधिक क्षति होती है। ये कीट पूरे वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत से फसल अवशेष दीमक के घर एवं रानी दीमक को नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मूंगफली के कीट एवं उनका नियंत्रण करके अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: मूंगफली में कीट नियंत्रण विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम घर आंगन में, जहां मधुर गीत संगीत और मुस्कुराहटों के साथ आप बिताते हैं दिन के कुछ खास पल। तो नमस्कार, आदाब और स्नेहिल अभिवादन आज चंदा की ओर से। देखिए, हमारी वसुंधरा, जिसे हम सभी प्यार से धरती माता भी कहते हैं, आइए आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धरती माँ के एक प्यारे से संदेश से। पेड़ों की छाया, नदियों का प्यार, प्रकृति करती हम पर उपकार, स्वच्छ रहे जल, स्वच्छ रहे वायु, यही तो है जीवन की सच्ची आयु। हाँ बहनों, कितना प्यारा संदेश है ना, जो हम सभी के स्वस्थ और लंबी जीवन की कामना के लिए ही कहा गया है। और ये तो हम भी जानते हैं कि यदि प्रकृति मुस्कुराती है तो हमारा जीवन भी मुस्कुराता है, हम खुश भी रहते हैं और हमारे सपनों की उड़ान और तेज़ हो जाती है। लेकिन आज हमारी यही धरती, हमारे जंगल, नदियाँ और हवा हमसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सखियों, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, हमारी सांसें हैं, स्वच्छ हवा हमें सांसें देती हैं, नदियाँ हमें जल दे रही हैं, वहीं पेड़ पौधों की बात करें तो ये हमारे जीवन को हरियाली और संतुलन देते हैं। साग सब्जियाँ हों या फिर फल फूल, दवाइयाँ हों या फिर आपके कॉस्मेटिक्स, सबके बेहतरीन साथी हैं हमारे वन, हमारा बाग बगीचा और वो खूबसूरत किचन गार्डन जिसे हम अपनी खुशियों से संवारते हैं। लेकिन अफसोस कि तस्वीर का दूसरा पहलू हमने ही बिगाड़ रखा है, बढ़ता प्रदूषण, कटते वन, जल और ऊर्जा की बर्बादी, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और वन्य जीवों के शिकार ने स्वच्छ शुद्ध पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। आज हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या फिर बड़े संगठनों का काम है, जबकि देखिए सच तो ये है कि इसकी शुरुआत

हमारे घर और हमारी दिनचर्या से ही होती है। जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं, बिजली और दूसरे ऊर्जा विकल्पों का सोच समझ कर उपयोग करें, कचरों का निपटान सही रूप से करें, पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं भी। और यदि हम ये सभी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो निश्चय ही हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। देखिए ना, मानसून का आगमन यानी बरसात का मौसम हमें पर्यावरण संवारने का संदेश भी देने लगा है। और इसी समय यानी जुलाई माह के पहले सप्ताह में हम मना रहे हैं वन महोत्सव, जो हम सबके लिए किसी उत्सव से कम नहीं। ये वन महोत्सव 2026 की शुरुआत है, जो केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का संदेश भी देता है। ये देखिए, बुजुर्ग कहते हैं, एक पेड़ 100 सुखों का आधार, हरा भरा हो अपना संसार। पेड़ हमें शुद्ध हवा, शुद्ध जल, फल, औषधि, ये सभी तमाम चीज़ें देने के साथ साथ अनगिनत जीव जंतुओं को आश्रय भी दे रहे हैं। तो चलिए हम अपने घर आंगन, विद्यालय, मोहल्ले और पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल का प्रण लें और हाँ, अपने बच्चों को भी प्रकृति की इस सेवा में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि वही हमारे आने वाले कल के जिम्मेदार प्रहरी हैं। सखियों, पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि ये जीवनोपयोगी पहल है, जिसमें हम सभी को सच्ची भूमिका निभानी ही होगी। ये सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन भर की पूंजी है हमारी, जिसे हमें संवारना भी है और संभालना भी। तो आइए, पेड़ पौधे, जल और धरती का मान करें, प्रकृति के इस अनुपम उपहार का सम्मान करें, पर्यावरण संरक्षण के संदेश को दिलों में बसाइए। और अब इन्हीं बातों के साथ आइए संगीत की दुनिया में भी कदम रखें, इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आज हमने लिया है फिल्म हरियाली और रास्ता से।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: सखियों, इस जरूरी संदेश के बाद देखिए अब वक्त है अपने इतिहास को टटोलने का, उसमें झांकने का। और आज शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो चलिए, हम किसकी चर्चा करने वाले हैं जानने के लिए आइए सुनते हैं आज का अंक।

श्रोताओं, वीरों की गाथा गाती है भारत की पावन धरती। त्याग, साहस और समर्पण से जिसने लिख दी नई इबारत। नारी शक्ति का वह स्वरूप जिसने हर बाधा को ललकारा। देश प्रेम की ज्योति जलाकर स्वाधीनता का स्वप्न संवारा। नमस्कार श्रोताओं, घरांगन के इस विशेष कार्यक्रम शक्ति अभिव्यक्ति में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, भारत की स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि असंख्य वीरों और वीरांगनाओं के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है ये, और हमारी आज़ादी का इतिहास उनके नामों से भरा हुआ है। ये नाम केवल वे नहीं जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिन्हें हम मीडिया में देखते हैं, बल्कि कुछ गुमनाम सेनानी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन उन्हें वह पहचान नहीं मिल सकी जिसके वे हकदार थे। तो चलिए आज आपसे चर्चा करते हैं एक ऐसी ही साहसी वीरांगना की, आज के हमारे शक्ति अभिव्यक्ति क्रम में, और इनका नाम है लक्ष्मी इंदिरा पांडा। उड़ीसा की एकमात्र महिला जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा थी, और वो भी महज 14 साल की उम्र में। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो वो अपनी पहचान पाने के लिए

दर दर भटकती रहीं। 1930 में बर्मा के रंगून के पास एक छोटे से शिविर में लक्ष्मी का जन्म हुआ। उनके माता पिता रेलवे निर्माण कार्य में मजदूरी किया करते थे। 1942 में जब जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया तो ब्रिटिश बमबारी के दौरान लक्ष्मी के माता पिता मारे गए, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का मन बना लेती हैं और इसी मंशा से इंडियन नेशनल आर्मी के कैंप तक पहुंच भी जाती हैं। लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए उन्हें बार बार मना कर दिया जाता, लेकिन एक बार कैंप निरीक्षण के दौरान वे नेताजी का रास्ता रोककर उनसे देश के लिए लड़ने की जिद करने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची की आंखों में वो जुनून, वो साहस देखकर नेताजी ने उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। शुरुआत में वे साफ सफाई का ही काम किया करती थी, पर साथ ही बंदूक चलाने और जासूसी की ट्रेनिंग भी लेने लगी। चूंकि लक्ष्मी को बर्मा की भाषा आती थी, इसलिए उन्हें बार बार जासूस के तौर पर दुश्मन के इलाकों में भेजा भी जाता था। आज़ाद हिंद फौज ने उन्हें इंदिरा नाम दिया और तब से वे लक्ष्मी इंदिरा पांडा के नाम से जानी जाने लगी। सभी दायित्वों को लक्ष्मी बड़े निष्ठा से निभाने लगी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो लक्ष्मी की जिंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल हो गई। किसी विशेष सुविधा या सम्मान की अपेक्षा के बिना लक्ष्मी साधारण जीवन यापन करने लगी। 1976 में पति खगेश्वर पांडा के निधन के बाद तो लक्ष्मी का जीवन और भी कठिन हो गया। एक समय देश के लिए लड़ने वाली अब घरों में जाकर मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। बेटे ने घर से भी निकाल दिया। बाद में उड़ीसा सरकार ने लक्ष्मी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और उन्हें 1,000 रुपये महीने की पेंशन भी मिलने लगी। पर केंद्र सरकार ने उन्हें कभी भी फ्रीडम फाइटर नहीं माना और उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उनके पास अपने जेल जाने का कोई सबूत था ही नहीं। और फिर समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे इस तरह उनका नाम गुमनामी में हो गया। इसी बीच 2007 में इतिहासकार अनिल धीर को इंडियन नेशनल आर्मी पर रिसर्च के दौरान लक्ष्मी इंदिरा पांडा का उल्लेख मिला। कुछ पूर्व सैनिकों से भी उन्हें इंदिरा के बहादुरी के किस्से सुनने मिले। धीर ने फिर लक्ष्मी को ढूंढने का प्रबल मन बना लिया। आखिरकार 6 माह उड़ीसा के अलग अलग शहरों में भटकने के बाद लक्ष्मी उन्हें कोरापुट के जयपुर में मिली। अनिल धीर ने उनके संघर्ष से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाए और अंत में 12 अगस्त 2008 को लक्ष्मी देश की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मिलने पहुंची और यहीं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान मिला। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों के बाद 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाली लक्ष्मी पांडा INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में सेवा करने वाली एकमात्र उड़िया महिला थी। ओडिशा सरकार ने अक्टूबर 2008 में लक्ष्मी की मृत्यु के बाद उनके स्मृति में जोपोर में एक प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा भी की। लक्ष्मी, आपका जीवन युगों युगों तक देश की बेटियों को प्रेरित करता रहेगा। सखियों, लक्ष्मी हमारे भारत भूमि की वो बेटी हैं जो न झुकी कठिनाइयों के आगे, न डर से कभी हार मानी, त्याग तपस्या और साहस से लिख दी अमर कहानी। उनके चरणों में हमारा शत शत नमन। उनका यश गूंजे हर द्वार, भारत की बेटियों को देती साहस, सेवा और संस्कार। शक्ति अभिव्यक्ति में आज बस यहीं तक। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक व्यक्तित्व की जीवन गाथा के साथ।

सखियों, शक देवी व्यक्तिक्रम में अभी आप सुन रही थीं लक्ष्मी इंदिरा पांडा जी के बारे में, जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये चर्चा अच्छी लगी होगी और इसने आपके

और अब देखिए समय हो चुका है व्यंजन विधियों का। हमारे घर आंगन कार्यक्रम में ये आपका एक खास अंक है सखियों। कहते हैं स्वाद सिर्फ जुबान पर ही नहीं बल्कि यादों और रिश्तों में भी बसता है, और इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खास व्यंजन हर शनिवार को। आज के व्यंजन भी बेहद ख़ास हैं। सबसे पहले महाराष्ट्रियन कढ़ी गोले बनाने की रेसिपी, और इसमें हम आपको बता दें कि ख़ास क्या है। ख़ास ये है सखियों कि इसमें इसे हम बिना फ्राई किए ही बनाएंगे, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद फ़ायदेमंद होगा। सामग्री है चना दाल भीगे हुए लगभग 200 ग्राम, बेसन 100 ग्राम, छाछ 200 ग्राम, लहसुन की कली 8 से 10, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 5 से 6, बारीक कटी हुई हरे धनिया की पत्तियां लगभग 1 कप, हल्दी आधा चम्मच, नमक स्वाद से, और तड़के या फिर बघार के लिए तेल 1 बड़ा चम्मच, मेथी 1/4 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, सरसों के दाने आधा चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, हींग चुटकी भर और खड़ी लाल मिर्च 3 से 4, घी आधा चम्मच। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले पकौड़ों को बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए ट्रेडिशनली जो चने का दाल हम उपयोग में लाते हैं उसको भिगो लें पानी में, और अच्छी तरह पानी को निथार कर इसको बारीक पीस लें। फिर इसमें हल्दी, थोड़ा नमक, बारीक कटी हुई हरे धनिया की पत्तियां, हरी मिर्च मिक्स करें और सबको एक सार कर इनसे छोटे छोटे गोले बना लें। अब कढ़ी के लिए दही लेकर उसमें बेसन, हल्दी और नमक डालकर उसे मिक्स करेंगे। फिर पानी मिलाकर मथनी से अच्छी तरह पतला घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। अब बारी है तड़के की। इसके लिए कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर राई, जीरा, करी पत्ते, हरी मिर्च कटी हुई और मेथी डालकर इसे चटकने दीजिए। फिर इसमें छाछ डालने से पहले अदरक

लहसुन और हरी मिर्च का मोटा दरदरा पेस्ट भी डाल लें और इसे एक मिनट भून लीजिए। बटर मिल्क यानी छाछ डालिए और जैसे ही ये उबलने लगे इसमें एक एक करके चने के दाल से तैयार किए हुए गोले डालते जाएंगे और इन्हें बिना चलाए ही थोड़ी देर पकने देंगे। जब गोले ऊपर तैरने लगे मतलब आपकी कढ़ी पक गई है। अंत में लाल मिर्च और हींग का तड़का लगा लीजिए और मिलाइए हरे धनिए की हरियाली। लीजिए स्पेशल स्वाद वाला ये महाराष्ट्रियन कढ़ी तैयार है खास आपके लिए, जिसमें तेल भी बहुत कम है और स्वाद तो लाजवाब। एक और रेसिपी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म श्री 420 से।

सखियों, इस प्यारे से गीत के साथ एक और बहुत प्यारी सी रेसिपी आपको बताना चाहेंगे हम आज के हमारे व्यंजन विधियों के क्रम में, और यह है अलसी की सूखी चटनी। इसके लिए सामग्री है अलसी यानी तीसी 200 ग्राम, सफ़ेद तिल 50 ग्राम, सूखी लाल मिर्च 5 से 6, मूंगफली दाना लगभग 100 ग्राम छिलके सहित, लहसुन की कलियां 5 से 6, खड़ा जीरा 1 चम्मच, सूखा नारियल 3 इंच और इमली का टुकड़ा 1 इंच। नमक आप स्वाद से लें। इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह का है। अलसी और यानी और तिल को बिना तेल के सूखा भून लें जब तक वे चटकने न लगे। कच्ची अलसी पचती नहीं है इसलिए खुशबू आने तक और चटकने दें से अच्छे से भूनें। जब सूखी कढ़ाई में मूंगफली, लाल सूखी मिर्च और छिलके सहित लहसुन की कलियां डालें, थोड़ा सूखा नारियल और जीरा भी मिला लीजिए। यही सब मिलकर स्वाद और सेहत दोनों देंगे आपको। सभी चीज़ों को ठंडा करके थोड़ी इमली और नमक डालकर दरदरा पीस लें। इमली का खट्टापन अलसी का स्वाद बहुत बढ़िया कर देगा। यह आपको कसैली बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा पूरी पराठे या फिर सूखे चावल के साथ खाइए, बहुत लाजवाब हो।

गाइस का स्वाद। तो देखिए, इन व्यंजनों के साथ ही आज के घर आंगन के से निकलकर हम आ पहुँचे हैं अपनी मंजिल तक। जी हाँ, मंजिल है आज के घर आंगन से हमारी विदाई। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी है, हमें अपने विचार जरूर भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी है gharangan@gmail.com। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका घर आंगन हमेशा खुशियों, प्रेम और मुस्कुराहटों से महकता रहे, आज घर आंगन से अपनी सखी चंदा को अब यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार श्रोताओं, किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, शब्दों की अपनी एक आवाज़ होती है और जब वे दिल से लिखे जाएं, तो दूरियां भी मिट जाती हैं। आपके स्नेह से भरे ईमेल हर दिन यही एहसास कराते हैं कि हमारे और आपके बीच आत्मीयता का ये रिश्ता कितना अनमोल है। इन्हीं भावनाओं की मधुर अनुगूंज लेकर हम उपस्थित हैं आपके प्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। मैं हूं आपके अपनी रेडियो साथी प्रियंका। अगले कुछ पलों तक हम पढ़ेंगे आपके भेजे हुए ईमेल और सुनेंगे आपकी पसंद के मधुर गीत। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, जिला किशनगंज बिहार से। रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, बबली और प्रियांशु साहू, ग्राम सौंगा मंगरलोट से फनीस कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और परिवार के सभी सदस्य, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीम, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार गुडाना, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, उत्तम नगर दिल्ली से

बूधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला श्याम कुंवर और चीनू आसमा, आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में भीगी पल की फिल्म का ये प्यारा सा गीत। संगीत निर्देशन है जुगल किशोर और साथी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में भीगी पलके फिल्म का ये प्यारा सा गीत। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कारवां फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है मजरूह की और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल मिला है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक गीता नायक निहारिका नायक और सुशांत नायक, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भाव्या कुमारी निवेश और नियति कुमारी, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोर जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा

श्रीमती रंजू, युवराज सिंह और शिवांगी धाकर। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुसार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और परिवार के सभी सदस्य। मजनू काटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, श्री खाजाद और पोपो रानी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में जोशीला फिल्म से। संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ साइना और मैंडी शर्मा, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा और परिवार के सभी सदस्य, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, क्लब अकोला से शरद पाजपुर, बेबी वैदिही और विहान बाबू, राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, बुल्ढाणा व सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मारकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और परिवार के सभी सदस्य, गांधीनगर गुजरात से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, बाई सुच्चा सिंह पाठक, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज अपने रेडियो साथी प्रियंका के साथ। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दतरेंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और परिवार के सभी सदस्य, शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल, शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान और परिवार के सभी सदस्य। इन श्रोताओं ने अपना पता नहीं लिखा है। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम काला पारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़ी, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और परिवार के सभी सदस्य, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार, जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज और हसन, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंत राव भोजने और पीएस नहनकर, ग्राम खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और साथी की आवाज़ों में।

मेल मिला है आप श्रोताओं का। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार और प्रणय कुमार साहू। प्रेषक सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारा साल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। नांदेड़ अताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल और परिवार के सभी सदस्य। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंत राव भोजने, बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु ऋषु, वी चैतन्य, दुर्गेश, अक्षय और अभिषेक नायडू। क्षत्रिय तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता। कसम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरिस खत्री, नूरू मीना और परिवार के सभी सदस्य। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती

कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुषी गुप्ता। गिरिडीह से अभय कुमार, सनातनी शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू और परिवार के सभी सदस्य। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र, प्रभजोत और बेबी जानविका।

पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। पंडरिया छत्तीसगढ़ से, पूरा पता सुनिएगा, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। ग्राम बजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, अलतमस खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल देवांगन। गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और परिवार के सभी सदस्य। डूंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तैनमय गजभिये। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलीस डिकेस्ट्रो। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आईएसएस अभिहानस और रेहान। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और परिवार के सभी सदस्य। डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर और सदानंद मंदुरकर। देवरी भाटा पारा से आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विकी, नानू रविंद्र, रौनक सेन। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश देशमुख और परिवार के सभी सदस्य। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक, गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और सौरभ डोडी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में बेताब फिल्म का ये प्यारा सा गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज के आज के अंक से अपने रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य

0: भविष्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन

0: निरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में पेश है जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया का लिखा ये गीत।

कार्यक्रम गीत गंधा में पेश है पंकज उधास की आवाज में, पंकज उधास और जफर गोरखपुरी का लिखा ये नगमा।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से आज सांध्यकालीन सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर।

आज रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे और रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। श्रोताओं का पसंदीदा सोशल मीडिया पर आधारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात 8 बजे। गैर फिल्मी और फिल्मी भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप लेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर लोक संगीत के कार्यक्रम गोधुली का समय होगा। इसमें आप सुनेंगे कुछ सरगुजिहा लोक गीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे शाम 7:00।

शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल और शाम 7:30 पर होगी किसानवाड़ी। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा रात 9:15 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज सांध्यकालीन सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:03 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 से आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं।

0: हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये बंसीपुर, बगड़ा, कोरंधा, दुर्ती, सोनगरा, दरहोरा, चंदौ, सरहरी, करंजवार, खड़गवा, झींगापारा, बोझा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर, राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, पेंडारी, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा, मानपुर, घटगांव, दातीढाब, बाबा पहाड़, बरडाण, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा, लोटापानी, श्रीटोली, मयूर चूंदी, बोडालता, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, कुदराझरिया, साजापानी, सोनारपहरी, बड़नीझरिया, सोनगेरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 111 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सैहा भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओड, ताराझर, डडईपानी, कोलापारा, बुडार, छिंदौला, लूठापारा, जालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट का प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के शुरुआत में

ये भजन अभी आप सुन रहे थे सुरेश वड़कर के स्वर में। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शागिर्द फिल्म से ये भक्ति रचना, मजरूह की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शागिर्द फिल्म से भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये भजन अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

ये भजन अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आप सुनते हैं गंगा तेरा पानी अमृत से, ये भक्ति रचना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रचना है साहिर लुधियानवी की, संगीत रवि का है।

इसी भक्ति गीत के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज की युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी डिग्री, सारे सर्टिफिकेट्स और सारे मार्कशीट्स सिर्फ एक मिनट के लिए गायब हो जाए तो क्या बचेगा? आपकी पहचान, आपकी काबिलियत या सिर्फ आपका आत्मा?

आत्मविश्वास, ऐसा सवाल जो सिर्फ हमारी पढ़ाई का नहीं, हमारी पूरी लाइफ का है। क्या आज का युवा डिग्री के साथ साथ खुद पर विश्वास कर पा रहा है? दोस्तों, आज है 4 जुलाई। आज ही के दिन इस दुनिया ने एक ऐसे युवा सन्यासी को खोया था जिसने दुनिया को भारत की ताकत से परिचित कराया था, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था, खुद पर विश्वास नहीं तो भगवान पर विश्वास भी अधूरा है। जरा सोचिए, आज हमारे पास मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट हैं, पर क्या हमारे पास खुद से मिलने का वक्त है? लिंक्डइन पर लंबी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पर शानदार बायो है, पर क्या हमारे मन में खुद के लिए उतना भरोसा है जितना हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं? आज हम हजारों डिग्रियां ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर रहे हैं, पर इंटरव्यू में जाते ही, स्टेज पर चढ़ते ही या रिजेक्शन मिलते ही पूरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, पूरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, डिग्री हमें नौकरी दिला सकती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही हमें चांस मिलता है। डिग्री हमें भीड़ का हिस्सा बनाती है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें भीड़ से अलग पहचान देती है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं थीं, पर उनके पास एक चीज़ थी, मैं कर सकता हूँ, ये वाला एटीट्यूड। इसी एटीट्यूड से इन्होंने इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई सपना है, UPSC, नीट, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस या फिर एक बेहतर इंसान बनना, तो डिग्री से पहले अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, क्योंकि किताब हमें ज्ञान देती है और आत्मविश्वास उस ज्ञान को दुनिया में रखने की ताकत। तो दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर खुद से एक वादा कीजिए, डिग्री के साथ साथ अपने आत्मविश्वास पर काम करना है, क्योंकि आत्मविश्वास ही है जो कामयाबी को झक मार कर पीछे आने के पर मजबूर कर सकती है। तो इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत। गीत लिखा है प्रशांत इंगोले ने, संगीत है संजय लीला भंसाली का।

दोस्तों अभी आपने सुना विशाल ददलानी की आवाज़ में फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हमारे सैटरडे स्पेशल प्रोग्राम एक ही फिल्म से में।

दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हर बार देखकर ऐसा लगता है, अरे ये तो हमारी ही कहानी है। आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने दोस्ती को नया रंग दिया, प्यार को नई परिभाषा दी और सपनों को उड़ने के लिए खुला आसमान। तो आइए करते हैं हमारे आज के इस क्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, अभी आपने सुना बेनी देओल और शेफाली की आवाज़ में फिल्म ये जवानी है दीवानी का गीत। और इसी गीत के साथ शायद आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के इस क्रम में हम बात कर रहे हैं 31 मई 2013 को रिलीज हुई फिल्म ये जवानी है दीवानी के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया था अयान मुखर्जी ने। दोस्तों, फिल्म में नजर आए रणबीर कपूर बनी के किरदार में, और वहीं नैना के किरदार में थी दीपिका पादुकोण। साथ ही आदित्य रॉय कपूर और कल्की कोचरिन ने दोस्ती को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि आज भी इनकी यारी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस फिल्म के बारे में और भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं श्री रामचंद्र और शिल्पा राव की आवाज़ में इस फिल्म का ये अगला गीत।

से ज़्यादा सफ़र मायने रखता है। और वहीं दूसरी तरफ नैना, जो किताबों में जीती थी लेकिन एक ट्रिप ने उसे जीना सिखा दिया। और शायद इसी वजह से इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज भी यही है, अपने सपनों के पीछे भागो लेकिन उन लोगों को कभी मत खोना जिनकी वजह से उस सपनों का मतलब बनता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये सबसे लोकप्रिय गीत शर्मली कोलगड़े और विशाल ददलानी की आवाज़ में।

दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के म्यूज़िक की, तो प्रीतम ने एक ऐसा जादू किया कि हर गाना आज भी प्ले लिस्ट का स्टार बना हुआ है। बदतमीज़ दिल, बलम पिचकारी, इलाही, कबीरा, सुभान अल्लाह, घाघरा, हर गाने का अपना अलग एहसास है। कई गाने आपको नाचने पर मजबूर भी कर देंगे। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये अगला गीत।

दोस्तों, उस फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं, दोस्ती है, अधूरे सपने हैं, करियर की दौड़ है, परिवार की अहमियत है, और सबसे बढ़कर यह एहसास है कि जिंदगी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में बनने वाली यादों का नाम है। कुछ फिल्में खत्म नहीं होती, वो हर बार देखने के बाद दिल में एक नई शुरुआत कर जाती है। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे आज के इस क्रम का अंतिम गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ में इसे फिल्म का ये गीत। दोस्तों ज़िंदगी में जितना ज़रूरी अपने सपनों को पूरा करना है उतना ही ज़रूरी उन लोगों के साथ वक्त बिताना भी है जो आपकी खुशियों की असली वजह है। इसी सोच के साथ हमारा आज का ये क्रम बस यहीं तक।

वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और फरमाइशी क्रम युवा पसंद। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाज़त। आपकी दोस्त शालिनी चौबे को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी मीडियम में वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन

0: किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। विषय है आत्मा, आलेख और वाचन स्वर है विजय कुमार का।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संत कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा केवल मन की शक्ति का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमारे वास्तविक अस्तित्व की ओर भी संकेत करता है। मनुष्य सदियों से ये जानने का प्रयास करता आया है कि वास्तव में वो कौन है। क्या वह केवल शरीर है? क्या वह केवल मन और विचारों का समूह है? या फिर उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो शरीर से परे है? भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्म इस प्रश्न का उत्तर आत्मा के रूप में देते हैं। आत्मा वह शाश्वत चेतना है जो जीवन का आधार है। यही कारण है कि आत्मा का विषय केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शरीर बदलता रहता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक अनेक परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो तत्व इन सभी परिवर्तनों का साक्षी बना रहता है वही आत्मा है। मनुष्य का नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति सब समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु आत्मा न बदलती है न समाप्त होती है। इसलिए आत्मा को अविनाशी, अमर और सनातन कहा गया है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में निवास करने वाली चेतना ही उसका वास्तविक स्वरूप है।

0: भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का संदेश था। जब मनुष्य आत्मा की अमरता को समझ लेता है, तब उसके भीतर से मृत्यु का भय कम होने लगता है और वो अपने कर्तव्यों का पालन अधिक साहस और निष्ठा के साथ कर पाता है। गीता में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये उदाहरण आत्मा और शरीर के संबंध को अत्यंत सरलता से स्पष्ट करता है। भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ उपनिषद आत्मा के स्वरूप का अत्यंत गहन विवेचन करते हैं। उपनिषदों के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म का अंश है और आत्मा तथा परमात्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित उस चेतना को पहचानना है जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। जैनिज्म के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। आत्मा अपने कर्मों के कारण संसार के बंधनों में फंस जाती है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, संयम और तप के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा को प्रत्यक्ष आँखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे हम हवा को नहीं देख पाते लेकिन उसका स्पर्श महसूस करते हैं, जैसे बिजली दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव हर उपकरण में दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती किंतु उसके कारण ही शरीर जीवित रहता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है, तब तक शरीर में चेतना रहती है। आत्मा के शरीर से अलग होते ही वो शरीर निर्जीव हो जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति शरीर को आत्मा का मंदिर मानती है। हम सभी ने कभी न कभी अपने भीतर से उठने वाली एक आवाज अवश्य महसूस की होगी। जब हम कोई गलत कार्य करने वाले होते हैं तो भीतर से कोई हमें रोकता है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भीतर एक संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसी को सामान्य भाषा में अंतरात्मा की आवाज़ कहा जाता है। ये आवाज़ हमें सही और गलत का बोध कराती है। यदि मनुष्य अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर इस आवाज़ को सुनना सीख ले तो उसका जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बन सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में आत्मा विषय पर आलेख, संकलन और वाचन स्वर था विजय कुमार का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर में शुरू। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। अब समाचार विस्तार ले। संसद के मानसून सत्र ये महीना के 20 तारीख ले शुरू होही और 13 अगस्त तक चलही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हा बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा 20 जुलाई ले संसद के मानसून सत्र बुलाए के सरकार के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दिहावें। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू हा कहिन कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दा ऊपर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय ले मा ध्यान केंद्रित करे जाही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गए है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र ले होइस। ओमन मंत्रिमंडल नेतृत्व, जीवन मूल्य, आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसन विषय ऊपर बात करें। ये दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ विभागीय कामकाज तक ही सीमित नहीं है, फिर ओमन ला जनता के बीच भरोसा के केंद्र घलो बनना है। उन्हें सत्र के

0: दौरान अभय करंदीकर हा मंत्रिमंडल के सदस्य मन ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस के बदलत भूमिका ले परिचित कराइन। ओमन बताइन कि अवैया बेरा मा वही शासन प्रभावी माने जाही जौन तकनीक के उपयोग सिर्फ सुविधा बर नहीं फिर तेज फैसला, बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी बर कराए। एकर अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र हा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर मंत्रिमंडल चर्चा करिन। ओमन ग्रामीण आय बढ़ाए बर, कृषि मूल्य श्रृंखला ला मजबूत करे बर, स्थानीय उद्यम ला बढ़ावा दे बर और गांव केंद्रित विकास के जरूरत ऊपर जोर दीन। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर बर अब अगला चरण विकास, जनविश्वास और अवसर के हवै। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, निवेश और स्थानीय आजीविका ये सबो क्षेत्र में प्रगति बर शासन के नवा सोच जरूरी है। ऐसन मा मंत्रिमंडल ला आधुनिक प्रशासन, तकनीक और जन केंद्रित नीति समझ ले लैस होना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा चिंतन शिविर ला बदलत समय के जरूरत बताइन है। ओमन की हिंकी शासन ला सरलग सीखे बर पढ़ी, खुद के मूल्यांकन करे बर पढ़ी और भविष्य के चुनौती के अनुसार खुद ला तैयार करना होही। श्री साय हा की हिंकी अब सरकार ला सिर्फ प्रशासनिक दिनचर्या के रूप में नहीं फिर विकसित भारत के लक्ष्य के अनुसार एक प्रशिक्षित जिम्मेदार व्यवस्था के रूप में गढ़ना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा सामान्य ले कमती वर्षा और ओखर प्रभाव के समीक्षा बैठका करिन। श्री शाह कहिन कि सरकार अलनीनो के सेती देश के कुछ एक जगह मा कमती वर्षा और संभावित सूखा के स्थिति मा सरलग नजर राखे हवै। ओमहना कृषि मंत्रालय और दूसर मंत्रालय मन ला सतर्क रह के और किसान मन ला बने फसल के बुआई के बारे मा सलाह दे बर राज्य सरकार मन संग सलाह करे के निर्देश दीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा चालू खरीफ सीजन और संभावित अल्प वर्षा के तैयारी के समीक्षा करत अधिकारी मन ला किसान मन बर खाद, बीजा और सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्था निश्चित करे के निर्देश दीन है। बैठका में बताया गया कि प्रदेश ला 46,000 टन ले ज्यादा DAP उर्वरक की आपूर्ति मिल गया हवै। मुख्यमंत्री हा जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती और ग्रामीण रोजगार ऊपर जोर देवत सबो जिला बर कार्य योजना तैयार रखे के निर्देश दीन। ओमन कहिन की संभावित अल्प वर्षा के चुनौती ले निपटे बर राज्य सरकार हा पूरा तरीका ले तैयार है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। नई दिल्ली में 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा ऊपर राखे गए राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुईन। कार्यशाला में ग्रामीण, स्थानीय निकाय बर अनुदान के अनुशंसा के जानकारी साझा करेगी। एकर अनुसार छत्तीसगढ़ ला अवैया 5 बछर में 11,664 करोड़ रुपया के अनुदान मिली। ए मौका मा ग्रामीण स्थानीय निकाय मनला वित्तीय संसाधन के आबंटन, पंचायत के वित्तीय क्षमता ला मजबूत करे के और 16वां वित्त आयोग के अनुशंसा मा कामकाज ले जुड़े विषय ऊपर गोठबात करेगीस। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम हा 11,000 दिव्यांग मनला स्वरोजगार बर ऋण देवाए के लक्ष्य राखे हे। संगे संग हितग्राही मनला कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया हा निगम ले अधिकृत आने आने बैंक के प्रतिनिधि मन के बैठका लेके स्वरोजगार ऋण योजना के काम के समीक्षा करिन। ए मौका मा श्री कावड़िया हा कहिन कि राज्य सरकार के उद्देश्य दिव्यांग मनला सिर्फ आर्थिक मदद दिवाना नहीं फिर मनला सफल उद्यमी बना के प्रदेश के विकास यात्रा मा सक्रिय भागीदार बनाना है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र

0: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करे जाहि। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई के बीच हुए बैठका में एकर ऊपर सहमति बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम डहार ले अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जावत थे। यही कड़ी मां कवर्धा परियोजना मंडल हा नर चीतल के अवैध शिकार के मामला में 7 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। मिले जानकारी के अनुसार बोरला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट के जंगल में शिकार में जाल बिछा के चीतल के शिकार करें। एकर बाद चीतल के मांसला आपस में बांटे के तैयारी करे जावत रही, तभे वन विभाग के टीम हा दबिश दे के आरोपी मनला गिरफ्तार करीस। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहारले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र मन हा एक संग्रह रिले कर ही। ए बखत के अंक मा सूरजपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर संग्रह प्रदेश के कतकोन जगह में आज गरज चमक के संग तेज वर्षा होए के खबर है। मौसम विभाग वैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी हा आकाशवाणी समाचार ले गोठ बात करत बताइन कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक ठन चक्रवाती घेरा बने हैं। एकर प्रभाव ले प्रदेश में बारिश के गतिविधि बढ़ गया हवे। ओमन हा बताइन कि अवैया 24 घंटा के दौरान राज्य के कतकुन जिला में भारी वर्षा होए के संग आकाशीय बिजली गिर सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। संसद के मानसून सत्र 20 जुलाई ले हो ही शुरू और 13 अगस्त तक चलही। राज्य मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज ले नवा रायपुर मा शुरू। और मौसम विभाग हा अवैया 3 दिन तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ मा 1-2 जगह मा भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली में आइए सुनते हैं कुछ लोक संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में लीजिए सुनिए रामचर्चा कर्मा परमेश्वर प्रसाद राजवाड़े और साथियों से।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुछ लोक संगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं ये गीत उपहार फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं रोटी फिल्म से गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ों में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आपकी कसम फिल्म से गीत, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: श्रोताओं, तकनीकी खराबी के कारण हम आपको ये गीत सुनवा नहीं पाए, इसका हमें खेद है। और फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा।

0: आ रहा हूँ, तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: रेडियो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से IIM रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन प्रशिक्षण शिविर आज से नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में शुरू हो गया है। पहले दिन की शुरुआत मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु गौर गोपाल दास के सत्र से हुई। उन्होंने मंत्रियों से नेतृत्व, जीवन मूल्य, आंतरिक संतुलन और सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता जैसे विषयों पर संवाद किया। इस दौरान बताया गया कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल विभागीय कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जनता के बीच भरोसे का केंद्र भी बनना है। वहीं सत्र के दौरान अभय करंदीकर ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित निर्णय और डिजिटल गवर्नेंस की बदलती भूमिका से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वही शासन प्रभावी माना जाएगा जो तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि तेज फैसले, बेहतर निगरानी और पारदर्शी डिलीवरी के लिए करे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि बस्तर के लिए अब अगला चरण विकास, जनविश्वास और अवसरों का है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर को बदलते समय की आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा कि शासन को निरंतर सीखते रहना होगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार रखना होगा। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा की जानकारी साझा की गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ को आगामी 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को अक्षुण्ण बनाए रखने राज्य के संभागीय और जिला मुख्यालय वाले सभी नगरीय निकायों में उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बताया कि मूर्ति स्थापना के लिए 10,60,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा राज्य के 32 नगरीय निकायों में लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। जलवायु परिवर्तन और सुपर अल नीनो के कारण संभावित अल्पवर्षा की चुनौती से निपटने के लिए कल धमतरी में कृषि विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक्सटेंशन रिफॉर्म आत्मा योजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक मित्रों को आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक खेती और फसल बीमा की जानकारी दी गई ताकि वे गांव गांव जाकर किसानों को जागरूक कर सकें। प्रशिक्षण में कृषि वैज्ञानिकों और विभागीय अधिकारियों ने कम वर्षा की स्थिति में फसलों को बचाने के लिए किसानों किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने मौसम की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पारंपरिक फसलों के स्थान पर कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों, दलहनी और तिलहनी फसलों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। साथ ही पानी की बचत के लिए वैज्ञानिक तरीके से धान की

0: सीधी बुआई तकनीक अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा खेतों में उपलब्ध पानी का सही उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में जनसंचार शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल और हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम विश्नोई के बीच हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सूरजपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम ने 11,000 दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कल विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता मार्गदर्शन और विपणन सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान करंट लगने की दो अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में आज सुबह मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते समय 2 मजदूर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। इस घटना में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बिलासपुर जिले के ग्राम भाड़म में कल खेत में काम करने गए पूर्व सरपंच समेत परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में मां और के 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच दसनबाई अपने 2 बेटों के साथ खेत में मवेशियों को घुसने से रोकने के लिए मेड़ पर GI तार और नायलॉन की रस्सी से घेराबंदी करने गई थी। इसी दौरान खेत में बिछे तार में अचानक करंट आ गया और 3 उसकी चपेट में आ गए। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है।
2: प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहने की आगामी 3 दिन तक रहने की चांसेस है और आज और कल जो है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और इससे लगे हुए क्षेत्र में, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और इससे लगे हुए क्षेत्र में अति भारी वर्षा की ज्यादा संभावना है। इसके अलावा भी बिलासपुर, रायपुर, बस्तर और राजनांदगांव संभाग में भी, ये जिलों में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा का संभावना है। और परसों से भारी वर्षा का गतिविधि कम होने के चांस है, लेकिन विस्तार रूप से वर्षा जो है वो परसों भी होने की चांसेस है।
0: छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा अवैध शिकार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कवर्धा परियोजना मंडल ने नर चीतल के अवैध शिकार के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बोड़ला परियोजना परिक्षेत्र के भलपहरी बीट स्थित जंगल में शिकारियों ने जाल बिछाकर चीतल का शिकार किया था। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। आवेदन जमा करने के की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की ग्राम पंचायत तरई गांव

0: के सचिव किशन राठौर को प्रशासनिक अनियमितताओं और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसी जिले में जिला प्रशासन ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के आरोप में सेमरा स्थित डीडी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वार्ड को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल का पंजीयन अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। बालोद जिले के ग्राम संबलपुर में बीते 30 जून को एक व्यक्ति के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोंडागांव पुलिस ने दूधगांव चौक के पास एक मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती रात एक अनियंत्रित ट्रक ने गायों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 9 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आज से आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ 2 दिवसीय चिंतन शिविर। मुख्यमंत्री ने इसे बदलते समय की आवश्यकता बताया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ को अगले 5 वर्षों में 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, ये वक्त होता है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण का। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों पर और कल दिन भर के कार्यक्रमों पर। पहले आइए जानते हैं आज के सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आप सुनेंगे। रात 10 बजे आप सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से अब से बस कुछ ही देर बाद शाम 7:05 पर हम पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे चौपाल कार्यक्रम। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम आपकी नज़र करेंगे रात 8 बजे। कुछ और फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में रात 9:15 पर। ये तो थे हमारे आज के सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र डालते हैं कल दिन भर के कार्यक्रमों पर।

बालकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल दोपहर 12:30 पर सुनिएगा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप मन के गीत। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे और शाम 6:30 पर विधिक सहायता पर केंद्रित कार्यक्रम कानून की बात में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 इस विषय के अंतर्गत आप सुनेगा अधिवक्ता विजय नगर रायपुर की कुमारी निशा गोडबोले से की गई बातचीत। और ये तीनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से प्रातः 6:35 पर रामचरितमानस का गायन रविंद्र साठे के स्वर में आप सुनेंगे। सुबह 7 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल में और शाम 6:20 पर गोधूली कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेगा कुछ लोक संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:15 पर चंद गज़लें हम आपकी नज़र करेंगे और शाम 7:05 पर रजनीगंधा के अंतर्गत भी कुछ गज़लें हम आपकी नज़र करेंगे। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और कुछ पुराने फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम के तहत। सरगुजिया लोक कथा श्रृंखला किस्सा कहनी के अंतर्गत कल सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा सरगुजिया कहानी टिकुलिया रानी। संकलन और लेखन होगा शिवव्रत सिंह पावले का। संयोजक होंगे नागेंद्र दुबे और प्रस्तुति होगी शोभनाथ साहू की। सामुदायिक गीत के प्रशिक्षण पाठ में कल सुबह 8:45 पर आप सुनिएगा उड़िया गीत का प्रशिक्षण। गीतकार होंगे केसी पाड़ीग्राही। सुबह 9 बजे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन हम लेकर आएंगे। कुछ फिल्म संगीत हम आपकी नज़र करेंगे नए तराने कार्यक्रम में 10 बजे। 11:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद के तहत। ईमेल की गूंज कार्यक्रम में दिन में 1:40 पर और इंस्टा फरमाइश के अंतर्गत रात 8 बजे। दिन में 1:10 पर हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण बहनें सुनेंगी। शाम 5:05 हमारे सांधिकालीन सभा के प्रसारण में शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय रहेगा और 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए हम लेकर आएंगे चौपाल कार्यक्रम। ये तो थे कल दिन भर के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 7:05 हुए हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत। आइए सुनते हैं चंद गज़लें।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिका

0: सीतापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

जफर गोरखपुरी की ये गजल अभी आप सुन रहे थे अशोक खोसला की आवाज में। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम।

0: राम राम बिरजू भैया।
1: राम राम कृष्णु भैया।
0: आओ बिरजू भैया, नगद दिन बाद रे भेट आई ही।
1: भाई देखी काम बूता में आदमी जो आए नहीं
0: हो
1: इतना कहली व्यस्त रहते कि भाई भेंट मुलाकात तनी कम होते। और अब तो मान ली कि भाई खेती बाड़ी कर समय आएगी से तो उतना मुलाकातों नहीं होगी।
0: हाँ
1: काबर कि भाई अब आदमी जो घर कर काम खेती कर काम वो में व्यस्त रहते। तो चलिए और बताइए क्या हाल चाल है।
0: देखिए हाल चाल तो बने हैं बिरजू भैया, बाकी ये बरखा ला लेके चटिक फिक्र आए हूँ।
1: अब भाई देखिए प्रकृति कर बात ला कैसे कह नहीं भाई, जैसे ऊपर वाला राखी उसने तो रहो और खेती करबो।
0: हाँ।
1: अब वही हिसाब से भाई हमन के तैयारी भी अब करना पड़ी। अब भाई जैसे वैज्ञानिक मन कहता है कि भाई तनिक बारिश कम हुई तो वही हिसाब से हमन के धान के किस्म के भी देखना है। मैं कहता हूँ कि भाई रोपा का सब पानी नहीं आई तो भाई बतराहा चाहे छिड़कवा विधि से भी धान के हमन बुआई कर सकत हन।
0: तो फायदा हर भेटे ही नहीं।
1: हाँ तो भाई कहकर मतलब है जैसे स्थिति आए वो हिसाब से हमला काम करना है।
0: और देखिए जेकर जग

0: सिंचाई कर सुविधा है तेमन का तो फिकर नहीं आ है, बाकी जेकर जेको कस सुविधा नहीं आ है तेमन तो भाई जैसे रोब कहन नहीं वो कस कह सकत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बाकी एक ठन और देखी मोर मन में बात आई नहीं बुझू भैया कि कभो कभो हमारे किसान भाई में ढेरेच मेहनत करते हैं, नगद मेहनत करते हैं, बाकी खेती हर उतना उपज ला नहीं दे पा रहे।
1: हाँ
0: तो ते घनी लागते नहीं कि दे खेती बाड़ी कर साथे साथे कहीं और काम उतारा हमरे शुरू करे रहते हैं तो चेती कुहर दे कमाई का आधार हो जाती।
1: बिल्कुल बड़ा सहायता हो जाते है गोट भाई। मान ली कि भाई हमन तो देखी गोट बात भी करत रहन कि भाई खेती तो ठीक है भाई ओवर तो चलतीच रही, लेकिन ओकर साथ ओकर जो जुड़ल मर कहली स व्यवसाय या स कृषि हो गई,
0: पशुपालन हो गई, दुधारू पशु ला पालत है,
1: मधुमक्खी पालन हो गई है ना, बकरी पालन हो गई, मछली पालन हो गई, तो ये तरह के या फिर जैसे आजकल किसान भाई मन मशरूम उत्पादन करता है तो कहे कर मतलब है या सब्जी उत्पादन करता है तो कहे कर मतलब यही चाहे कि भाई खेती के साथ साथ जो है ना एगोट व्यवसाय ला चलाना चाहिए खेती के साथ। हाँ, काबर का होते कि भाई अभी मान ली कि भाई अभी तो मन सुना था कि भाई पानी कम हो ऐसा झेन हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि पानी नहीं हुई खेती होते कि नहीं बढ़िया नहीं हुई, लेकिन जो एकर से जुड़ल जो दूसर व्यवसाय है ओकर से जो आय हो ही ओकर से तो भाई हमन एक खतरा ले बच जाबो
0: और खेती बाड़ी में आगू खर्च करबो।
1: हाँ तो वही मैं कहता हूँ कि भाई खेती तो ठीक है वो तो भाई हमर परंपरा से चलत आते है ओकरा तो हम नहीं छोड़न, लेकिन मैं कहता हूँ भाई कि जो प्रकृति कर कहली कि भाई जो समस्या है भाई ओके ओकर से निपटे पर तो जरूरी है कि हमने एगो दूसर समानांतर व्यवस्था करी अपन आय कर ताकि भाई हमार आय जो है हमेशा बनल रहे।
0: मैं तो कहता हूँ नहीं कि एकरे बार यदि हमारे जो सरकार है नहीं ते राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन कर कार्यक्रम में शुरू करे रही काबर की खेती कर साथे साथ यार अतिरिक्त आमदनी कर हमारा आधार हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है नहीं।
1: और देखिए जो बात जो कह रहे कहा था राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, देखी मधुमक्खी कहली की राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड बनी सा है
0: ऐसे
1: भारत सरकार द्वारा, और देखिए ये सरकार जो है मधुमक्खी पालन के मतलब बढ़ावा देता है और कोशिश करता है कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं उनके आय बढ़े है ना, और साथ में कृषि उत्पादकता में भी बढ़वार हो। भाई हमन जैसे मधुमक्खी पालत हन कृष्णु भैया तो देखिए एक तो मधुमक्खी मन परागण जो करते हैं भाई एक फसल से दूसर फसल में करते एकर से हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होते और कह ली कि भाई वैज्ञानिक मन जैसे कहते हैं कि 30-40% तक वृद्धि होते। तो जो किड़वा या कहली मधुमक्खी हमर पर्यावरण बर बढ़िया ना है, हमर आय बर बढ़िया ना है, भाई हमर कृषि उत्पादन ला बढ़ाता है, तो भाई मैं तो कहता हूँ कि ये तो बड़ा बढ़िया चीज है कि जो खेती के साथ हम कर सकत हन।
0: और देखिए नहीं जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन कर हमरे बात करत ही नहीं जेकर देखिए उद्देश्य भी है कि मधुमक्खी पालन ला जो है आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका लेहन बढ़ावा दे।
1: बिल्कुल
0: है नहीं। एकर साथ साथ देखिए हमारे किसान भैया बहनी मन कर आय में वृद्धि हो ही और गुणवत्तापूर्ण शहद भेटा ही फसल में रबरे कहते हैं कि रे परागण बढ़ाए के कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार हो ही और वेट करते च रहे। और एक साथ साथ देखिए नहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार कर भी अवसर पैदा हुई।
1: बिल्कुल
0: है नहीं। शहद हमारे ज्यादा भेटा ही तो शहद कर निर्यात ला भी बढ़ावा मिली।
1: बिल्कुल। और कृष्णु भैया देखिए रोजगार कर बात तो रोरे कहबे करें मैं कहता हूँ कि ये जो मधुमक्खिया है ये व्यवसाय खातिर पैसा नहीं लागे
0: ऐसे ना?
1: उतना ज्यादा पैसा के बातें नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई एक दो पेटी से शुरुआत रोरे मन करी, एक दो पेटी जो है अपन गांव में भाई जो कहली बढ़ैया है उमन से बनवा ली, या फिर जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे जाके अपन मतलब बता कि हमने मधुमक्खी पालन चाहत हन तो उमन सहायता करते हैं, जहाँ वो बक्सा हर बनते वहाँ से बक्सा ले ली तो बड़ा कम में शुरुआत कर सकते हैं।
0: जानती देखी सरकार भी एकर में सहायता दे है।
1: हाँ
0: कृषि विज्ञान केंद्र कर बात करें नहीं
1: हाँ?
0: तो यदि मधुमक्खी बक्सा और उपकरण पर भी सहायता देते, प्रशिक्षण और तकनीकी जो मार्गदर्शन होते वह हर भेटायल, शहद प्रसंस्करण पैकेजिंग और विपणन कर भी सुविधा कर वहाँ प्रशिक्षण देते।
1: अच्छा।
0: और गुणवत्ता परीक्षण और ब्रांडिंग ला भी में बढ़ावा दे जाए तो भाई नगद तो सहयोग मिलता है।
1: बिल्कुल। और जो कह रोरे कहा था ना जो

0: मधुमक्खी पालन है, इसमें सब्सिडी भी देते, कई ठन योजना भी है। तो हमारे जो किसान भाई हैं ये मधुमक्खी पाल के भाई बढ़िया आय कर सकता है। और ये जो मधुमक्खी पालन है, समझ ली कि भाई में जो है हमारे जो किसान भाई हैं, प्रशिक्षण जरूरी है,
1: प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। वही मैं कहे चाहते हैं कि कहीं काम बोताले शुरू करें नहीं। हाँ। बिरजू भैया नवा कामला शुरू करत है तो भाई प्रशिक्षण बहुत जरूरी।
0: हाँ।
1: है
0: भाई हमें जाना था, ठीक है वो बातला। अब भाई मैं कहत हूँ कि भाई वो मंत्र ला नहीं जाना, वो चल दे सांप ला पकड़े।
1: हाँ, तो चाय भी हो
0: तो। चाय दे ना। हाँ। तो ओकरे मैं कह
1: राहुल कहा थी कि फायदा नहीं भेटा है नहीं।
0: हाँ भाई देखी हम समझना पड़ी ना कि भाई कौन मौसम में उपमन के कैसे ध्यान रखना है, कौन मौसम में पेटी ला कहाँ ले जाना है, ओकर देखभाल कैसे करना है, कौन सा किड़वा मन से बचाना है, ये सब सावधानी बड़ा जरूरी है। तो हमर जो किसान भाई हैं मधुमक्खी पालन करके बढ़िया आमदनी कमा सकता है।
1: हाँ, बाकी नहीं बिरजू भैया आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी आ है।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो सहकारिता है जिला हमारे सहकार का थी एकर से भी हमारे समृद्धि भेटा सकत है। हमारे गांव गवई किसान जो है नहीं वो कह ली कि हमारे आत्मनिर्भर भारत कर ताकत है।
0: बिल्कुल,
1: और ये ताकत तबे बनी नहीं जब ये सहकारिता ले हम काम करबो।
0: बिल्कुल, और देखिए रउर से गोठियात भी रहन, तो कहत भी रहन कि भाई सहकार के मतलब है एक साथ मिल के काम करना। और एक साथ मिल कर जब हमन काम करथन तो देखी आपस में जो है हमन एक दूसर के सहयोग करथन, एक दूसर के समस्या ला समझथन। और ये जो हमन कहली कि भाई एक समिति जो बनाथन वो अपन विकास पर, अपन लोग खातिर और खुद विकास खातिर लोकतांत्रिक तरीका से चलाथन उला, उमें एक दूसर कर हमन सम्मान करथन, एक दूसर के बढ़े आगू बढ़े में सहयोग करथन, समस्या ला समझथन। तो मैं कहता हूँ कि भाई सहकारिता एगो ऐसा चीज है कि जेमें हमन सबो जन मिल के आगू बढ़ सकथन, एक साथ आगू बढ़ सकथन।
1: ऐसे नहीं।
0: हाँ,
1: कुल मिलाए के जब किसान ग्रामीण और जो छोटे उत्पादक हैं एमन मिल के सहकारी समिति कर माध्यम से काम करते नहीं तो एक परिणाम हर बहुत अच्छा आते और देखिए उकस से आय बढ़ते, लागत हर चटी कम लागते। राउर यदि कहते रहें कि भाई मिलजुल के काम करबो नहीं तो बढ़िया होई, विपणन भी ज़्यादा अच्छा होते और आर्थिक विकास कर बात करिए नहीं तो यह बहुत तेज होते। कहते नहीं कि सहकारिता का सिद्धांत है सबकर साथ और सबकर विकास।
0: हाँ।
1: है नहीं, और सामूहिक प्रगति।
0: बिल्कुल,
1: तो यही सिद्धांत पर यह आधारित है और यही जो सहयोग है नहीं हमारे गांव गवई ला समृद्ध बनाते और आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वाला मजबूत करते।
0: बिल्कुल, बड़ा बढ़िया गोठियान। और मैं कहता हूँ कि भाई हमन जो समूह में चलबो तो हमर कहले कि भाई सामाजिक विकास, आर्थिक विकास है ना, और कहले कि हमर कर संगठन कर विकास जम्मो जाते में समाहिता है।
1: हाँ।
0: और जब हमन एक साथ चलथन तो भाई एगो ताकत बनते,
1: ताकत
0: और भाई ताकत कर देखी सम्मान तो पूरा दुनिया करता है।
1: हाँ,
0: हाँ, तो ओकर बर जरूरी है कि भाई हमन जो सहकारिता कर बात है वो जो नियम है ओकर पालन करी और वो नियम से चली और खुद ला भी आगू बढ़ाई और अपन संगठन ला भी आगू बढ़ाई।
1: बिल्कुल सही बात कहन। बाकी बेरा ला देखी बिरजू भैया का कहता है, बेरा हर कहता है कि हमारा अपन प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में चली तो कैसे कहती।
0: हाँ, चलल जाए।
1: चली तो

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई मनकर स्वागत है। किश्नु भैया, आज जो हमर किसानवाणी कार्यक्रम है ओमे हमन गोट बात करबो कि भाई अभी जो मौसम आए वर्षा कर ओमे पशु मन में का का रोग होते, एकर अलावा हमन बात करबो कि भाई जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ओकर से किसान भाई मन कैसे लाभ उठा सकता है। तो हमारा आज के कार्यक्रम में देखिए लोकगीत भी आए और नकदी फसल के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई मना है उनसे वन गोट बात करता है, वह गोट बात है।

0: और एगो तो आ है जोग लिखी जिमे कि हमारे किसान भाई मन चिट्ठी भेजते हैं अपन समस्या भेजते हैं तो हमन प्रयास करते हैं कि भाई उनकर जो जवाब दिल जाए। एक अलावा मंडी भाव और मौसम के जानकारी तो रह बेच कर ही
1: आज कर सवाल भी रही।
0: हाँ
1: तो इधर और मौसम कर बात करत रहे नहीं मौसम हर बदले नहीं बिरजू भैया तो मन से
0: हाँ
1: जानवर मन भी विराम हो जाते
0: हैं। हाँ जम्मो
1: है नहीं काबर की ये बरखा कर मौसम में नहीं हमार आसपास कर जो वातावरण है उकर में नमी अधिक होते कहो कहो देखिए जल भराव हो जाते
0: हाँ।
1: गंदगी हो जाती है और कीट पतंगा कर जो संख्या है नहीं यार बैठ जाए तो पशु मन में कई ठन संक्रामक और परजीवी रोग कर खतरा बैठ जाए। अगर समय पर हम उचित देखभाल और टीकाकरण नहीं करी नहीं तो बहुत सारा रोग से बचाना संभव नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल और ये ऐसे मौसम में भी देखिए चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो बचा के रखना जरूरी है। और रोरे जो बात बोला था कि भाई ये जो मौसम होते तो नमी बढ़ते तो देखिए कीटाणु और जो बैक्टीरिया और वायरस जो है इमन के थोड़ा सा आवागमन जो है बढ़ जाते तो ये वजह से क्या होते कि थोड़ा सा हमारे जो कहली भी हमारे स्वास्थ्य है या हमारे जो पशु हैं स्वास्थ्य प्रभावित होते तो बड़ा बच के रहना जरूरी है। और जब हम पशु के बात करते तो भाई देखी मैं अपन व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ तो मैं अपन पशु मल्ला टीकाकरण करवा देता हूँ
1: आगुले
0: नहीं आगुले
1: तो टीकाकरण कराए ले दे फायदा ये होते कि कहीं रोग ब्याज कर संभावना अगर है तो हर नहीं होए।
0: हाँ खत्म हो जाते हैं ना भाई।
1: हाँ बहुत सारा चीज देखिए बिरजू भैया नहीं सावधानी ले भी अपन रोक सकते है। बरखा कर मौसम में देखिए रे एक ठन दुधारू जो जानवर होते हैं तिमन में गलघोंटू रोग सुने
0: बिल्कुल
1: तो कहते हैं कि हम ज्यादातर गाय और भैंस में होते।
0: अच्छा
1: तो एक में जान थी एक लक्षण का है तेज बुखार हो जाए गला में सूजन हो जाए जानवर ला सांस लेहे में कठिनाई हो लगे ला भूख कम लगे तो राउर कहे नहीं कि रे टीकाकरण करवाए ही रहो रे।
0: हाँ।
1: तो टीका लगवाना बहुत जरूरी है बरखा शुरू हो कर पहले।
0: अच्छा
1: और मान ले कि पशु हर बीमार होएगी सह तो वो पशु मल्ला आने पशु मल्ले अलग रखना है।
0: काबर कि भैया ये रोग हर फैल थे नहीं
1: फैल थे एक ठन और रोग सुने हो बराबर ढेर छोटे मुंह पक और खुर पक।
0: हाँ ये हु रोग हर परेशान करते।
1: हाँ ये हुला कथे नहीं कि हर संक्रामक होएल इमें जो जानवर है उकर मुंह और खुर में यदि छाला कस दिखे लागते।
0: हाँ
1: लक्षण यह है कि वह लार ज्यादा गिराते और लंगड़ा के चले लगे। वैसे देखिए एक भी बचाव यही है कि नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं और संक्रमित पशु ला अलग रखें। पेट में देखिए यही मौसम में कीड़वा हो जाए।
0: हाँ।
1: बरखा कर मौसम में देखिए हरा घास और जो गंदा पानी है नहीं तो एक संक्रमण हर बहुत बाढ़ेल।
0: अच्छा
1: एक लक्षण यह है कि जानवर का जो वजन है वह घटे लगे और दस्त और कमजोरी ज्यादा होल वाला। एकर बारे का करें नहीं बिरजू भैया कि आसपास का जो पशु चिकित्सक हैं तीमन कर सलाह लेके नियमित रूप से कृमि नाशक दवा ओला हर जरूर दें।
0: बिल्कुल
1: और देखिए एक में आने और रोग भी होत वहीं बहुत।
0: हाँ और भी रोग होते तो वो हिसाब से जैसे मौसम में विशेषकर जो रोरे नाम ले हैं वो विशेष रूप से होते।
1: हाँ।
0: तो किसान भाई जो है अपन पास कर जो कहली पशु हॉस्पिटल है वहाँ जाके जो है उकर उपचार जरूर कराएं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई एक से बचे खातिर बड़ा जरूरी है कि समय से या कह ली कि भाई ये जो बड़ा रोग है एक से बचे खातिर साल में देखिए 2 बार टीकाकरण कराना
1: जरूर करवाएं
0: बड़ा जरूरी है। एक से हमारे जो पशु हैं सुरक्षित रहते और भाई स्वस्थ भी रहते हैं तो एक से जो हमारे काम है चाहे या हमारे जो व्यवसाय है दुग्ध उत्पादन कर व्यवसाय जो है वो हर नहीं रुके।
1: हाँ
0: और चलते रहते
1: एक ठन देखिए बिरजू भैया ढेर सुने में आते थनैला।
0: हाँ थनैला तो हाँ अब देखिए कहे कर मतलब हम गोठियात रहन की वर्षा ऋतु में।
1: हाँ।
0: तो ये देखिए जो थनैला है तो कभी भी हो सकता है लेकिन विशेषकर अभी जैसे हमारे जो पशु है यदि कड़ा जगह में बैठते हैं या फिर कीचड़ में बैठते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा संक्रमित होकर आशंका बने रहते तो एकर भी ध्यान रखें।
1: एकर लक्षण कर बात करी नहीं तो इमें जो दुधारू पशु है उसका थन में सूजन आ जाए।
0: हाँ
1: दर्द होएल और जो दूध है नहीं उसमें में बदलाव दिखे लगे।
0: हो
1: बचाव बरे का करें कि दूहे कर पहले और बाद में ठन कर अच्छा लेहन सफाई कर लें।

0: बिल्कुल।
1: और सबले जो सावधानी कर बात है नहीं ओहर यह है कि पशु ल जहाँ रखते नहीं ते जगह ल साफ सुखा और हवादार रखें, उस जगह में जल भराव झेन हो दें, बढ़िया साफ और ताज़ा पानी ल पिलाएं, संतुलित और पौष्टिक आहार दें ओला, ध्यान रखें कि गीला और सड़ा गला चारा ओला नहीं खिलाएं।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ आए वहाँ मच्छर मक्खी और किलनी अगर आएँ तो उमन ले बचाव कर उपाय करें, नियमित रूप से टीकाकरण और कृमिनाशक पिलाएं ओला, और बीमार पशु ला स्वस्थ पशु से अलग रखें।
0: बिल्कुल,
1: कोई भी अगर लक्षण दिखाता है निबिरजू भैया तो तुरंत पशु चिकित्सक ले संपर्क करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए अभी बरसात का समय है तो पशु मन ला हो सके तो भीगे से भी बचाएं, और जहाँ पशु मन रथें वो कितनी सूखा रखे कर प्रयास करें, और भाई साफ सुथरा रखें जहाँ पशु रथें, और विशेषकर जो बछड़ा या जो बछिया हैं उमन के भी विशेष ध्यान रखें कि भाई अभी देखिए मौसम के असर से उमन के भी स्वास्थ्य जो है प्रभावित होते, तो बड़ा जरूरी है कि भाई हमार जो जितना भी पशु धना है वो कर बरसात के मौसम में तनिक के जैसे कि भाई अमन गर्मी में रखत रहें उसने अब थोड़ा सा बरसात में रखना है, साफ पानी पिलाना है, और देखिए हो सके तो भाई देखिए अभी जो बरसात घास होते ना ये भी थोड़ा स्वास्थ्य ला प्रभावित करते हैं, तो एकर से भी थोड़ा सा यदि हो सकत है तो बचा के रखें पशु मल्ला, और जो छोटा पशु है जो बच्चा है बछड़ा बछिया है उमन के भी स्वास्थ्य कर ध्यान रखें, और कृमि नाशक जो दवा है समय समय पर देते रहें, और एकर अलावा जो जरूरी बताएं कि भाई टीकाकरण और पास कर जो पशु हॉस्पिटल है वहां जाके संपर्क जरूर करें।
1: देखिए जनावर मल तो देखिए अन बोलता होते उमन कहीं उमला दुख तकलीफ भी होते नहीं तो उमन तो बोले नहीं सके भाई, उमला हमला खुदे देख के समझना है।
0: हाँ,
1: है नहीं,
0: किसान भी उमन समझते हैं लेकिन कभी कभी भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि पास कर जो पशु हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर मना है तो वहाँ से संपर्क कर जरूर कर लें।
1: माने जो चीज़ समझ में नहीं आता है पहला तो पशु चिकित्सक चाहे बताए दही और उसका बढ़िया इलाज भी करी भाई।
0: हाँ देखिए कृष्ण भैया, मैं कहते रहन कि भाई देखिए सरकार तो बड़ा प्रयास करते हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं बढ़िया आगू बढ़ें और जो है बढ़िया सहायता कर जो योजना है उसका फ़ायदा उठाएं। उसने एक देखिए योजना है किसान क्रेडिट कार्ड कर।
1: अच्छा,
0: और मैं देखी में बढ़िया सस्ता ऋण भेटा थे और बढ़िया खेती पर सहायता सरकार दे थे में
1: ऐसे।
0: हाँ, तो ये देखिए जो किसान क्रेडिट कार्ड तो रोज बनवाए हो भाई, मैं तो बनवाए हूँ और देखिए ओकर बड़ा फायदा है कि अभी जैसे अब धान कर खेती है तो अभी तो मैं खातुला उठाए नो जब
1: ऐसे।
0: हाँ, खातुला उठाए, अब देखिए वो में लोन भी देते ऋण भी देते, तो भाई पर एकड़ के हिसाब से देते, तो जितना खेत आए किसान भाई मन कर
1: अच्छा।
0: उतना ऋण उपलब्ध कराते, तो हमारे जो किसान भाई हैं वहाँ से भी ऋण लेके बड़ा कम ब्याज पे देते, तो वो ऋण ला लेके कह ली कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं जो खेती करना चाहते हैं अभी खरीफ कर मौसम में वो खेती कर सकते हैं, और देखिए ये ऋण कर भुगतान जब फसल कट जाते नहीं
1: अच्छा।
0: तब करना पड़ते
1: ऐसे नहीं।
0: हाँ, तो देखिए ये बड़ा मतलब कह ली कि बढ़िया सहायता योजना है सरकार कर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो सबो किसान भाई मान ला किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और देखिए नहीं कार्ड कर बात करें नहीं तो एक सबले बड़ा फायदा तो यह है कि हमन यदि समय पर बीज खाद और कीटनाशक खरीद सकता है।
0: बिल्कुल,
1: राउर देखिए कहन की खरीदे हूँ मैं तो इसने बाकी किसान भी खरीद सकता है कार्ड ला बनवाए के। खेती बड़े देखिए कर ले धन में कमी नहीं होल, कहीं देखिए अगल बगल ले कहीं दूसर ले जो कर्जा लेत रही तेकर से मुक्ति मिल गई, इसका बाद घर में ब्याज बहुत ज्यादा लगे।
0: हाँ,
1: है नहीं, यह सुविधा लेहन मिल जाता है। खेती बाड़ी बड़े अगर नवा कोई कृषि उपकरण लेना चाहता है आधुनिक तकनीक ले खेती करना चाहता है तो ये उपयोग ला भी बढ़ावा मिलते एक से।
0: बिल्कुल,
1: है नहीं,
0: बिल्कुल,
1: तो कृषि उत्पादन और किसान भैया बहनी मन कर आय में फिर वृद्धि होते। पशुपालन और आने कोई कृषि आधारित व्यवसाय है तो तेकर भर भी सहायता ले सकता है, है नहीं। और उधर और कहें नहीं कि भाई पात्रता जो है वह तो भूमि स्वामी रहना जरूरी है।
0: और देखिए आजकल ये भी आएगी से कि जो किसान भाई मैंने एग्री स्टे का है कहली कि भाई एप्स आए तो उनमें रजिस्ट्रेशन कराना भी बड़ा जरूरी है।
1: ऐसे नहीं
0: तो जो किसान भाई एग्री स्टेक में

0: अपन रजिस्ट्रेशन नामांकन नहीं कराए नहीं तो जरूर करा लें, या फिर संयुक्त खाता भी है तो भी कराना बड़ा जरूरी है।
1: अच्छा,
0: संयुक्त खाता वाले मन के भी और एकल खाता वाले मन के भी एग्री स्टेक में नामांकन कराना बड़ा जरूरी है। कहें कि भाई ये देखिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है कहता है कि भाई जो जो किसान मन के एग्री स्टेक में नामांकन हुई वही मन अपन धान ला बेच पाई, तो ये काम ला किसान भाई मन जरूर कर
1: ले। और यदि कार्ड पर जो जरूरी दस्तावेज है नहीं बिरजू भैया, आजकल तो देखिए सब जन बढ़िया सुविधा लेहन रखते हैं, आधार कार्ड होगी, पहचान और निवास प्रमाण पत्र होगी, भूमि संबंधी दस्तावेज अगर लागत है तो वाला भी जमा करना पड़ेगी, है नहीं? पासपोर्ट आकार कर फोटो, बैंक खाता कर विवरण और मोबाइल नंबर,
0: इतने किसान क्रेडिट कार्ड में इतने कागजात लगते, तो कोई भी किसान भाई जो है अपन किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकत है। अगर खातिर भाई बैंक में गोट खाता खोल ले और फिर जो उनकर जो समिति है वहाँ पे जाके अपन रजिस्ट्रेशन करवा ले, तो एक से बढ़िया ऋण भी भेटा जाते, बढ़िया सहयोग भी हो जाते, वहाँ से अपन खाद बीज सब जात उठा सकत हन और वो गिन पैसा नहीं लगे, जब हमन फसल हो जाते तब वो में हमला पैसा पटाना पड़ते।
1: इतना बढ़िया तो देखिए बिरजू भैया राव जानकारी रहे, एक आठन बढ़िया गीत सुनवाए देते नहीं तो चटिक मनहर हरियर हो जाते।
0: तो चलिए सुनत ही एक लोकगीत है जो लगाता है मोहम्मद खलील, तो आइए गीत ला सुनल जाए।
1: हाँ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: नगर तो गीत ला सुनवाएं बिरजू भैया
7: हो
6: आओ देखी नहीं। खरीफ कर खेती कर तैयारी कर बारे में राव रे दे गोएट करी ही जगिमा कर किसान है उज्जवल ता मैं कहत रहन कि गोएट ला सुनते
7: हो
6: लेगी तो
8: किसान भाई आज मोर साथ है एगो प्रगतिशील किसान, उनकर से हमन गोट बात करके जाना था कि कौन कस खरीफ फसल के तैयारी करत है, का का बुनते है, का का समस्या है। तो सबसे पहले अपन नाम बताई।
9: उज्जवल कुमार यादव।
8: कौन गांव?
9: ग्राम पंचायत जगीमा।
8: अच्छा, ये शंकरगढ़ में आते
9: हैं? हाँ, शंकरगढ़ ब्लॉक।
8: उज्जवल जी अभी का खेती में तैयारी चलत है?
9: अभी चलत है वही धान का, वही सब वगैरह रोपाई उपाई का अभी चलत है काम।
8: कितना पढ़े हैं?
9: मैं बीए किया हूँ अभी।
8: अच्छा
9: जी,
8: तो अभी मतलब जाप की तैयारी करत है ना, साथ में खेती भी?
9: खेती में अभी रोपाई है, टमाटर वगैरह है, धान वगैरह लगाना है, टमाटर बैगन।
8: अच्छा, सब्जी भी लगा था?
9: हाँ सब्जी भी।
8: बारिश तो हुई फिर रुक गई, तो ये साल
9: अभी अभी तो बारिश संभावना कम है, हल्का वही बारिश साथ है, हल्का फुल्का, तो वही देख

0: फिर अपन खेती बाड़ी देख सो समझ के आदमी करत है।
1: हाँ, मौसम के बारे में जैसे रेडियो से भी मतलब मौसम के समाचार प्रसारित होते, और अपन मोबाइल में भी मौसम के समाचार ला देखन।
0: हाँ, मोबाइल
1: इधर का बोलता है मानसून के बारे में?
0: अभी तो वही कमे संभावना है, बारिश बार बोलत है पूरा। हाँ,
1: तो फिर
0: 20 से 25% तक है संभावना बारिश का।
1: अच्छा, तो फिर खेती
0: जी,
1: कैसे हुई?
0: वही तो समस्या है। हाँ,
1: तो जैसे रोपा तो लगना लगा से मुश्किल है इस स्थिति में।
0: हाँ, रोपा कम है, वही सिंचाई उचाई करके, तालाब उलाब है, नहर वहर, तो इस सिंचाई में। हाँ,
1: हाँ, नहीं तो छिटवा विधि बढ़िया रही कि रोपा?
0: नहीं, रोपा भी है और वो छिटाई वाला, वो जो बुना होते ना वही वाला, बुना भी है और रोपाई भी है, दोनों है।
1: तो थरहा लगा दे ही क्या?
0: हाँ,
1: का के थरहा लगा है? का बीजा मतलब हाइब्रिड है तो
0: हाइब्रिड है सब।
1: देसी धान की खेती नहीं कर सन?
0: अभी कुछ देसी धान का रोता नहीं। हाँ
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो अभी जैसे सरकार के चलत है योजना खेत बचाओ चलत है, तो
0: जी,
1: मैं सरकार कहते कि भाई जो रासायनिक दवा है रासायनिक खातु के प्रयोग कम करल जाए, तो राहुल कर का विचार है?
0: अब मिले खाद तो ऑर्गेनिक तो ठीक है, डीएपी से तो अच्छा है। वही डीएपी
1: नहीं जैसे
0: में वो
1: हाँ
0: बंजर जमीन हुआ थे पूरा, डीएपी मारे पर।
1: हाँ
0: हाँ, डीपी है, यूरिया है।
1: तो भाई हमन कम कैसे कर सकत हन रासायनिक खातु के? रोड़े बताई रासायनिक खातु के कम करल जाए ऐसा
0: हाँ,
1: मानना है, और हमन खुद समझतन भी कि हमार
0: नहीं,
1: जमीन।
0: डीपी डीपी डीपी कम करना चाहिए। हाँ,
1: हाँ
0: डीपी यूरिया हो गए ऐसे साहब, ओकर बर का है, जमीन बंजर पूरा होते जाता है, पैदावार धीरे धीरे धीरे धीरे कम होता है। हाँ, पूरा
1: तो कैसे करल जाए?
0: अब तो कर पूरा वही गोबर खाद वगैरह डालने से अच्छा है
1: तो
0: एग्रीनिक।
1: वैज्ञानिक मन भी कहता है कि भाई अपन खेत ला बनाए पर जो है भाई गोबर
0: हाँ
1: खाद हो गई, केचुआ खाद हो गई, सारा खाद हो
0: हाँ
1: गई, एकर
0: जी
1: प्रयोग करी। और
0: जी
1: जैसे कि भाई जैविक दवा में जैसे नीम पताई के, नीम फल के, नीम तेल के, ओकर
0: हाँ
1: हांडी दवा हो गई, करंज बेसरम दवा मिला के सब बनाते हैं ना, ब्रह्मास निमास,
0: हाँ
1: एकर
0: जी
1: यदि हमन प्रयोग धीरे धीरे करी तो ठीक है कि एक धार तो नहीं करबो, तो भाई
0: हाँ
1: एकर में हमारे पर्यावरण भी सुरक्षित रही और हमारे स्वास्थ्य भी सुरक्षित रही।
0: स्वास्थ्य भी ऐसे का है, दवाई भी जैसे डीपी यूरिया अगर मारते तो स्वास्थ्य भी अपन खराब होते धीरे धीरे पूरा।
1: और माटी का भी
0: हाँ
1: स्वास्थ्य खराब होते हैं,
0: हाँ पूरा
1: तो पर्यावरण भी हमारे देखी कि हमन भाई रासायनिक दवा ला मारथन और किड़वा मन मरते हो, किड़वा मन ला चराई मन खाते हो, मन मर जाते हो,
0: हाँ,
1: तो
0: ओकर पैदावार
1: पर्यावरण।
0: पैदावार धीरे धीरे कम होते हैं पूरा।
1: अच्छा, पैदावार भी कम होता है।
0: हाँ, काहे पूरा कीड़ा उड़ा सब मर जाता है दवाई डालने से, खाद डालने से, डीपी यूरिया। हाँ
1: क्या कि भाई जो मित्र कीट है या फिर मान ली कि जो जमीन में जो जीवाणु है वो मर जाता है,
0: हाँ हाँ हाँ वही सब समस्या है बस। हाँ,
1: तो इसके निपटे पर तो कुछ करना पड़ी।
0: कुछ तो करना पड़े निपटे भर और कुछ नहीं।
1: तो अभी मतलब थरहा डाल दे ही रोड़े?
0: हाँ, पूरा थरहा डालल है और बुना भी है करल।
1: अच्छा।
0: हाँ, छीटा वाला। हाँ,
1: अच्छा,
0: पानी
1: तो
0: के देखते हुए भी।
1: अच्छा, तो ये उज्जवल जी ये बोलत हो कि जैसे
0: जी
1: सब्जी के भी खेती करते रहे?
0: हाँ, सब्जी के खेती।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो सब्जी में अभी का तैयारी चलत है? तो
0: अभी तो टमाटर की तैयारी चलत है पूरा, जोताई उतई हो गई से सब।
1: अच्छा, फिर एक बात क्या करो?
0: फिर टमाटर के बाद वही पूरा, फिर अपन फिर दूसरा वही बैगन वगैरह है, तरबूज वगैरह
1: हाँ,
0: लगाना
1: वो तो
0: है।
1: हिसाब से करते हैं। जैसे अभी टमाटर के लगातन तो मैं पहला काम का कहता हूँ, जैसे भाई खेत तो तैयार हो गए, सरहा पर लगा ले हैं पहले से कि मंगातन कहीं से थरहा
0: नहीं, वो मंगाता ना दुकान से पूरा। हाँ,
1: कहाँ से मंगाते
0: ये तो शंकरगढ़ दुकान से तो मंगाते हैं, अंबिकापुर से, तो यही ऑर्डर देते हैं पूरा।
1: हैं? अच्छा, तो नर्सरी से मंगाते थरहा
0: हाँ
1: ला, फिर मतलब तो सीधा खेत में ले जाते हैं दौरे वहां?
0: हाँ हाँ पूरा खेत में।
1: अच्छा, तो कितना क्षेत्र में लगा इधर टमाटर? अच्छा,
0: अभी तो 1 एकड़ में लगाना है, अभी कम कर देना है 1 एकड़। हाँ,
1: मतलब टमाटर की खेती यही साल करत हैं कि पहले भी करत रहे? तो
0: नहीं पहले भी करते हैं।
1: इसमें मेन समस्या क्या आते हैं?

0: में वही है, अभी लगाए बार कभी कभी रेट कम बेसी उछाल। हाँ
1: भाई रेट तो ठीक है, होगी। मैं कहता हूँ कि
0: हाँ
1: जैसे रोग राई या फिर किसान मत कैसे बढ़िया देखभाल करें।
0: वही भाई, खेत में जाके वही देख रेख करना
1: भाई रोग राई,
0: है, रोग राई अपना देखना है कौन सा क्या करना है। सबसे
1: हाँ
0: अच्छा है अपना जो गोबर खाद वगैरह रहे ना
1: हाँ
0: वो सब डाले से अच्छा पैदावार है।
1: अच्छा टमाटर के।
0: हाँ टमाटर वर का है, पूरा देखल है, मैं पूरा करके देखे हूँ, अच्छा पैदावार है, कंसा भी टमाटर में अच्छा मारे। हाँ
1: किसान भाई जो है बढ़िया गोबर खातू भी प्रयोग करें, लेकिन
0: हाँ हाँ
1: कभी कभी देखिए दीमक के भी समस्या आते क्या कुछ
0: हाँ दिमाग के कभी जब भी समस्या आए तो दिमाग पर तो इतना
1: दवा मार
0: भी
1: देता।
0: दवा मारते पूरा।
2: तो कृष्णु भैया, हाँ देखिए ये जो गोट बात रही सुला, तो देखिए पूरा नहीं सुनवाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अब जोग लिखी भी आए
3: हाँ
2: तो
3: तो
2: चिट्ठी ला हमन उठा थन, और
3: हाँ
2: देखिए
3: लिखी
2: चिट्ठी
3: तो
2: आई से जयमंत्री केवट जी कर, ये लिखता है कि भाई अदरक बीज कर तो ये इंतजाम कर लेना है, लेकिन बोलता है कि भाई एकर उपचार कैसे करल जाए, बोए
3: बीजोपचार।
2: से, हाँ बीज उपचार कैसे
3: हाँ
2: करल जाए।
3: लिखी तो
2: तो देखिए जयमंत्री जी, पहले तो कार्बेंडा जिम से रोडे जो 50% है वोकर से कर ली, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल बनाए के और कंदला आधा घंटा डुबाए दी, एकर बाद जो है छाया में एक सुखाए के फिर बोए कर रोडे शुरुआत कर सकत हन। एकर अलावा मैंको जेब जो 75% है WP, वो 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में भी एकर उपचार डाल के आधा घंटा डुबाए के उपचार कर सकत हन। यदि जैविक विकल्प कर बात करी तो देखिए ट्राइकोडर्मा वीडी जो है 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कंद के दर से उपचार कर सकत हन।
3: हाँ अब आप देखिए, नहीं मंडी भाव कर बात मैं बता दूँ तो मंडी भाव आज का रहे धान 2370 रुपया, गेहूं 2586 रुपया, मकई कर बात करी 2100 और महुआ 3000 रुपया, रागी 4000 रुपया। मौसम कर बात करी तो आजकल जो अधिकतम तापमान रही 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, काल का अनुमान है कि अधिकतम 31 डिग्री रही और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
2: और एक साथ अब देखिए किसान वाणी से विदा लेकर समय हो गई से, तो चल जाए।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए पेश है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश ये कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, आज कार्यक्रम को लेकर मैं प्रस्तुत हूं पूनम उपाध्याय। साथियों, संगीत ईश्वर का दिया हुआ वह अनमोल उपहार है जो शब्दों से परे जाकर सीधे हृदय को स्पर्श करता है, और जब संगीत में फिल्मी गीतों का रंग घुल जाए तो हर धुन यादों, भावनाओं और जीवन के अनेक रंगों को जीवंत कर देता है। फिल्मी गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पल के साथी हैं। खुशी हो तो गीत, गम हो तो गीत, प्रेम हो तो गीत, और कभी कभी तो हमारी खामोशी में भी गीतों की आवाज़ को ढूंढ लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सुरों की इस खूबसूरत दुनिया में प्रवेश करें और महसूस करें उन गीतों का जादू जिन्होंने बरसों से हमारे दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का यह शानदार संगीतमय कार्यक्रम। आशा है आप सभी इसका भरपूर आनंद लेंगे। तो शुरू करते हैं गीतों का सिलसिला और आपके फरमाइशों को पढ़ने का सिलसिला। कार्यक्रम में हमने लिया है पहला गीत दीवाना फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू ने। समीर के बोल संगीत नदीम शवन का है और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति।

श्री घनश्याम राम, हरिशंकर रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े ने, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का ऐश्वर्या, प्रीतम मनोज, मिथिलेश यादव ने भी फरमाइश भेजी है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े ने सुनना चाहा है इस गीत को। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने भी फरमाइश भेजी है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा ने सुनना चाहा है। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू ने भी फरमाइश भेजी है। पटेल नगर मालोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू ने सुनना चाहा है। गांव केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद्र सिंह टेकाम, संजय सिंह सिंधराम, कमलेश कुमार मरावी, अनुपम उरेती ने सुनना चाहा है। और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से फरमाइश आई है। विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू का। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत,

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत जीवन मृत्यु फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जसवाल, उर्मिला जसवाल, दीपक जसवाल, स्वाति जसवाल ने। ग्राम पंचायत खुंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार सायक, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी ने। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान खान ने। गांव हाड़ी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने और अनविका तनुश्री गुप्ता ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

जीवन मृत्यु फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत सोनू निगम तुलसी कुमार की आवाज़ों में, समीर का लिखा हुआ, संगीत अनु मलिक का है और फिल्म है हमको दीवाना कर गए। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका बल, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने ने, जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा है। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ने, संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के ने, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से गीत भप्पी लहरी आशा भोसले की आवाजों में। इंदेवर की रचना है, संगीत भप्पी लहरी का है। इस गीत को सुनना चाहा है जलगांव जंक्शन से दिनेश कानले, वंदना काले ने। ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर ने। टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर पीएम थांदी, बेबी वामिका वाणी थांदी ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं लेकिन फिल्म से गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार के बोल हैं और इस गीत को सुनना चाहा है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल गोस्वामी, बेबी जोई और नरेंद्र तिवारी ने। जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, विनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार ने। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय ने। गांव केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद सिंह टेकाम ने। बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युवती दास ने। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी ने। लोकेश जोशी, बेबी वैदेही जोशी, बेबी

हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी ने, इन्होंने भी अपना स्थान नहीं लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने भी अपना स्थान नहीं लिखा है। फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट ने भी फरमाइश भेजी है। खोखरा वाले श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा, शगुन बरासा ने भी सुनना चाहा है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने भी फरमाइश भेजी है। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने सुनना चाहा है। हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार ने भी इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा ने सुनना चाहा है इस गीत को और इसी गीत को पसंद किया है। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, अविष्कार गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़ और अनामिका गायकवाड़ ने। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं इंदिवर की शब्द रचना लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाजों में, फिल्म आखिर क्यों से, गीत को संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, सुनना चाहा है इस गीत को। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी ने, बीड़ शहर महाराष्ट्र से पोपटराव कुलथे, हेमंत प्रथमेश कुलथे ने, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, सेक्टर 18 गदाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन नाथ मालवीय ने, सांगली जिले से अल्ताफ हुजरे, रिंगरी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी ने, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला जी, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा ने, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया, रेनू, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव ने, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, आशिक चौहान ने, साहू नगर यवतमाल से राहु मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी ने, जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, गुड़िया वेदा सिंह। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम नगमा।

इसी गीत के साथ इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।

0: शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास

0: विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक

0: घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के

लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि

अनामिका फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अब सुनते हैं मुकेश का गाया ये गीत कटी पतंग फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आरडी बर्मन का है।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मजबूर फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया सी याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिष्ठ सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की

0: आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेशवाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं

0: यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?

0: ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं, और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था, और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है, और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है, और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, और उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है, और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था, और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था, और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे, और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है, तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है उनको बुलाया जाता है, और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के एक अशर्फी दे देते हैं।

इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे

0: दुआने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने थे, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य

के सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्मत्त यूनान जानता था न मगध के बल को,
समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस

0: जंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी, उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Thumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: Aaj raat Pandit Arnob Chattopadhyay ke saath sangat karenge तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: टुनाइट पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय।

0: is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
1: खयाल गायन के इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिन्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट

0: five-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. Jacob Bethell was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 और 20 सेकेंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सांधिकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।